नमस्कार, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 7 तारीख, तदनुसार 29 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है।

0: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4%

0: हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य विनोबा भावे का कथन है, ज्ञानी वो है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है झरोखा। हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस की अगली कड़ी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता पेश किया जाएगा 6:45 पर। पुराने फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में 7:00। 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा 8:15 पर और 2:00। कार्यक्रम चित्रलोक सुनिए 8:30 पर सुबह और फिर 8:15 पर। जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर हमारा कार्यक्रम आज का अखबार आप सुन सकते हैं 9:30 पर। 10:05 पर कार्यक्रम होगा सफर सुरीला सा।

एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में दिन में 11 बजे डॉक्टर शालिनी नायर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री पीजीए चंडीगढ़ से बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय रहेगा धूम्रपान। लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुनेहे मित्रां दे पेश किया जाएगा दिन में 11 बजकर 30 मिनट पर।

दोपहर 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित किए जाएंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सदाबहार नगमे प्रसारित किया जाएगा दिन में 2:30 पर। कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा 3:00। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सेल्युलॉइड के सितारे। आज इस कार्यक्रम में अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत सुनाई जाएगी। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग पेश किया जाएगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम अमृत बाणी प्रसारित होगा शाम 6:30 पर। कार्यक्रम जयमाला आप सुन सकते हैं शाम 7:00। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवा महल कार्यक्रम में रात 8:00 झलकी सुनिए, प्रश्न तो यही है। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेता महमूद पर केंद्रित रहेगा। और रात 10:00 सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस की अगली कड़ी। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

रावण के मुख से सीता हरण तथा युद्ध का वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी हो गया। वह रावण को धिक्कारता है जो जगजननी का अपहरण करके अब अपना कल्याण चाहता है। कहता है, अब भी यदि अभिमान त्याग कर वह श्री राम की शरण जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नारद मुनि से मिला ज्ञान वह रावण को दे देता, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अतः वह भाई से गले मिलकर युद्ध में जाने को तैयार हो जाता है, जहां उसे समस्त पापों का हरण करने वाले कमल नयन श्री राम के दर्शन होंगे। असंख्य घड़े मदिरापान और भैंसों का भोजन करके वज्र गर्जना करता

कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ पहुंचा। वहां विभीषण उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने अपमान और निष्कासन की कथा कह सुनाई। कुंभकर्ण ने छोटे भाई विभीषण का साधुवाद किया, फिर बोला, रावण पर काल सवार है, अब भला वह सदुपदेश क्या सुनेगा। धन्य है तू जो अपने सत्कर्म से राक्षस कुल का भूषण हो गया, किंतु अब मैं भी काल के वश में हूं, मुझे अब अपना पराया कुछ नहीं दिख रहा, अतः तू प्रभु के पास वापस लौट जा।

0: गीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, विविध भारती के खजाने से आज हम लाए हैं सहसवान घराने के गायक हाफिज अहमद खान से राम सिंह पवार की बातचीत।
2: खान साहब नमस्कार।
3: नमस्कार पवार साहब।
2: खान साहब आज आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हो रही है और
3: मुझे भी ऐसे ही मसरत हो रही है।
2: एक संगीत चर्चा हम लोग करेंगे।
3: जरूर
2: खान साहब, जैसा कि ज्ञात है जिला बदायूं यूपी के सहसवान कस्बे के नाम से इस घराने का नाम सहसवान घराना पड़ा।
3: जी हाँ।
2: तो इस घराने को सहसवान रामपुर घराना भी कहते हैं।
3: जी हाँ।
2: इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।
3: जी हाँ, ऐसा है कि इस कस्बे में यानी कि सहसवान में
2: जी
3: बहुत अच्छे अच्छे गायक हुए हैं और इसी वजह से इसका नाम सहसवान घराना है। लेकिन चूंकि ये सारे कलाकार रामपुर दरबार में थे तो इस वास्ते इसका नाम सहसवान रामपुर घराना पड़ गया। क्योंकि जहाँ तक आपको तो मालूम है कि राजा और नवाब ये जितने भी गुजरे हैं ज़्यादातर उन्होंने कलाकारों की बड़ी सरपरस्ती की है
2: जी।
3: और उनके आश्रय में ले रहकर हमारे कलाकारों ने यानी बहुत ही तरक्की जो है वो पाई है। तो इस लिहाज से ये सहसवान रामपुर घराना जो है ये कहलाता है
2: जी। खास साहब, जैसा कि अनुमान या ख्याल है कि प्रारंभिक दिनों में इस घराने में ध्रुपद धमार गाया।

0: तो ख्याल गायकी में
1: जी
0: बीन का जो ये अंग है यानी मींड
1: जी
0: हमारे यहाँ की गायकी में साफ झलकता है
1: जी हाँ, तो इससे गायन के सौंदर्य में वृद्धि हुई है
0: जी हाँ,
1: ऐसा है
0: यानी ऐसा यानी मनहरण लगता है सुनने को, यानी जो हमारे यहाँ एक एस्थेटिक्स है
1: जी
0: सौंदर्य
1: जी
0: जिसको हम उर्दू में जमालियाती पहलू कहते हैं
1: जी,
0: तो एक तो इसका असर जो है इस मींड का असर आपका दिल जो है वो मुतासिर होगा, लेकिन और जो सरगम वगैरह का सारी चीज़ें जो हैं उससे वो आपका दिमाग जो है वो प्रभावित होगा या उससे वो उसका रसा स्वादन करेगा।
1: खास साहब इस गायन शैली की और भी तो कई विशेषताएं हैं
0: जी हाँ,
1: जैसे गमक बहलावा
0: जी हाँ, बहलावा भी ख़ास है क्योंकि विलंबित और तान के दरमियान
1: जी
0: एक तरह से ये एक पुल समझिए, सेतु समझिए।
1: अच्छा,
0: और वो ऐसा है कि बहलावा का मतलब ये है कि बहलाना, जैसे बच्चों को बहलाया जाता है
1: जी,
0: तो सुरों को बहलाया जाता है, और इस तरह से बहलावा अगर आप सुन लें तो आप तैयार हो जाइए कि थोड़ी देर के बाद में तानों का सिलसिला जो है वो शुरू
1: होने वाला है।
0: अच्छा, आप कह ना

0: इसमें खास इस बहलावे में आपने देखा होगा कि जिस वक्त एक सुर से दूसरे सुर पे हम जाते हैं तो एक चीज़ का इस्तेमाल होता है जिसको हम समझिए हिक्का कहते हैं
1: जी।
0: हिक्का यानी सॉफ्ट जर्क।
1: अच्छा।

0: ये हेक्का है,
1: जी
0: तो इस तरह से मींड, बहलावा, हेक्का।
1: जी
0: और इसके अलावा इस घराने की एक विशेषता ये भी है, क्योंकि इस घराने में टप्पा भी बहुत ही खूबसूरती से गाया गया है।
1: अच्छा।
0: इनायत हुसैन खान साहब ने बहुत अच्छा टप्पा गाया, मुश्ताक हुसैन खान साहब ने, उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब ने, और आज के युग में जो हमारे यानी घराने के सबसे मशहूर और यानी उमर रसीदा कलाकार हैं उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, तो उसमें ख़ास तौर से मतलब उनकी गायकी में भी टप्पा अंग

0: अब ये आपने देखा टप्पांग हो गया।
1: खान साहब, अभी आपने उस्ताद निसार हुसैन खान साहब का नाम लिया, उनका भी गायन के साथ साथ तराना गायन में बहुत
0: जी हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि
1: योगदान रहा है।
0: जी हाँ, कि सही तराना गायकी के वो एकमात्र कलाकार
1: हैं,
0: प्रतिनिधि हैं, क्योंकि उसके जो कुछ बोल हैं दृढ़तम, तो वो सफाई से निकलना चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो तराने का मजा नहीं आएगा। तो ये एक तराने की एक मुख्तसर से हम मैंने आपके सामने पेश किया, तो ये भी एक मुख्य अंग जो है। एक मैं और बताना चाहता था, सरगम का भी एक अंदाज एक बहुत ही निराला अंदाज है
1: जी,
0: क्योंकि आवाज तानों में तो जाती तीनों सप्तकों में, तीनों सप्तकों में सरगम का भी जो समझ जो है प्रेजेंटेशन, वो भी बड़ा खूबसूरत रहा है, और उसको हम छूट की सरगम कहते हैं
1: जी।
0: गामा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा नी नी नी नी नी नी दा पा मा गा रे सा सा गा रे सा गा रे सा नी दा पा मा गा रे सा दा नी सा रे सा रे सा नी दा पा मा गा रे सा। तरतीब और एक बेतरतीब, सा रे सा नी दा पा मा गा रे सा नी सा गामा पा गामा गा रे सा नी दा पा मा गा रे सा पा मा पा गामा गा रे सा नी दा दा दा दा दा दा पा मा गा रे सा नी सा गा रे मा गा पा मा दा पा दा मा पा गामा गा पा मा पा गामा गा दा पा मा गामा पा गामा गा रे सा नी दा पा पा पा मा गा रे सा नी दा पा मा गामा पा रे सा।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर खान साहब, आपने सहसवान गायन शैली की खूबसूरतियों विशेषताओं को बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाया, और हमारे श्रोताओं को निश्चित ही पसंद आएगा। एक प्रश्न और खान साहब आपसे करना चाहेंगे,
0: फरमाइए,
1: कि ट्रेडिशनल जो हमारे राग हैं,
0: यह पारंपरिक
1: पारंपरिक जो राग हैं, कामोद काफी और बिहाग आदि अन्य राग, तो जब उन्हें पारंपरिक ढंग से गाया जाता है तो उसकी तस्वीर हमें स्पष्ट नजर आती है समझ में, और आजकल बहुत से कलाकार नए रागों को भी रच रहे हैं
0: जी,
1: तो आपका क्या ख्याल है कि उससे हमारी संगीत में क्या कुछ नवीनता आ रही
0: जी,
1: और हमारे जो आजकल के जो कलाकार हैं सीखने वाले विद्यार्थी
0: जी,
1: उन पर इस प्रयोग का अथवा इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है, आपके क्या ख्याल है
0: जी? पवार साहब, ऐसा है कि आज जो राग प्रचलित हैं वो किसी ज़माने में कुछ लोगों ने उनका आविष्कार किया होगा,
1: अच्छा,
0: और धीरे धीरे वो प्रचलित हुए और अति लोकप्रिय भी हो गए
1: जी।
0: अच्छा, तो असल में बात ये है कि कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं
1: जी,
0: जिसकी रोशनी में रागों का निर्माण होता है। अगर वो नियम सामने रखकर नए रागों का आविष्कार किया जाता है
1: जी,
0: तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें हमारे यहाँ जो रागों की सूची है उसमें वृद्धि होगी, लेकिन कम से कम मैं ये देख रहा हूँ कि जो नए राग आज जो लोग यानी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं
1: जी,
0: वो

0: इन उसूलों पर पूरे नहीं उतरते, कुछ भी नाम रख दिया और किस कुछ भी यानी जो स्वर समूह है उसको तैयार कर दिया, तो जो ज्यादातर जो नए नए रागों का जो प्रयोग किया जा रहा है मेरी निगाह में वो संगीत को उससे हानि पहुंच रही है।
1: खैर तो खान साहब, आपसे मिलकर आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई, हम आपका आभार प्रदर्शित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने श्रोताओं को जो मेरे यानी छोटे मोटे विचार हैं उनको भी प्रकट करने का मैंने प्रयास किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाबर सर।
2: सहसवान घराने के गायक हाफिज अहमद खान से राम सिंह पवार की बातचीत आप सुन रहे थे। संगीत सरिता के लिए यह कार्यक्रम वर्ष 1985 में विजय शंकर चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब सुनते हैं हाफिज अहमद खान का गाया राग बिहाग में तराना।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
8: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं छोटी बहन फिल्म के गाने के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुवीर सेन की। हसरत जयपुरी के बोल और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अनवर का लिखा हुआ और उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम शबनम।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: 1 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए शैलेंद्र का लिखा और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाए।
1: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: अगला गाना हमने लिया है गोदान फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, लिखा है अनजान ने और धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने।
1: पिपरा के पतवा सरी के डोले मनो।

0: आयो देसन देसवा की चल आज देसवा की ओ
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
7: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
6: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
8: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
6: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
9: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजों में जिद्दी फिल्म से हजरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में दर्पण फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: अरे जल गई जल गई।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में धरती फिल्म का गाना। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत। फिल्म का गाना आनंद बख्शी है गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मौसम

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: क्या गाना, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम गवार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

0: जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में रूठा ना करो इस फिल्म से। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

का चेहरा माशाल्लाह।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में रूठा ना करो फिल्म का गाना। इस गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए

0: दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और पीयूसी प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीन दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से इतना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्र

0: राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
1: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
0: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गाँव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
2: इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उलदा रहा है, उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
0: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
3: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाता को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
6: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान

0: अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, किशोरियों से गैंगरेप, पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े चार और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें, बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्य ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुने कार्यक्रम त्रिवेणी। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

0: दोस्तों नमस्कार। एक खूबसूरत सा शब्द है हृदय। छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें हमारी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी है। दिल खुश होता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, दिल उदास होता है तो आंखें नम हो जाती हैं। किसी अपने की एक छोटी सी बात भी दिल को छू जाती है। लेकिन यह दिल केवल भावनाओं का केंद्र नहीं है। हमारे शरीर में मौजूद हृदय हर पल हर क्षण हमारे लिए काम करता है। हम जाग रहे हों या सो रहे हों, खुश हों या परेशान, दिल अपनी धड़कनों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। इसी अनमोल दिल की सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो आज बातें उसी दिल की, जो कभी किसी की खूबसूरती देखता है, कभी किसी के प्यार में धड़कता है और कभी किसी की याद में टूट जाता है। और जब बात दिल की हो तो चेहरे से ज्यादा दिल को देखना ही शायद सबसे जरूरी है।
1: दिल को

0: चेहरा झूठा।
1: चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल की अच्छाई लंबे समय तक याद रहती है। कुछ ऐसा ही हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। हम बाहर से अपने आप को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त देखते हैं, लेकिन अंदर हमारा दिल किस हालत में है, इसका पता लगाना भी उतना ही जरूरी है। आज की जीवन शैली में हर काम की भागदौड़ में अपने खाने पीने, नींद, व्यायाम और मानसिक सुकून को अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। तनाव को सामान्य मान लेते हैं और शरीर के संकेतों को टालते रहते हैं। दिल की देखभाल के लिए बहुत बड़े बदलाव हमेशा जरूरी नहीं होते। रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी शारीरिक सक्रियता, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव को कम करने की कोशिश और अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात, दिल का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी है। कभी कभी हम मन में इतनी सारी बातें दबा लेते हैं जैसे दिल के अंदर भी एक गिरह पड़ जाती है। किसी से बात कर लेना, अपनी मन की बात कह देना, थोड़ा गुनगुना लेना, मुस्कुरा लेना, मन शायद ऐसी ही कितनी गिरहें खोल देता है।

खूबसूरत बात है, दिल की गिरह खोलने के लिए एक गीत भी काफी हो सकता है। संगीत हमारे मन के बहुत करीब होता है, कभी खुशी में साथ देता है, कभी अकेलेपन में साथी बन जाता है, और कभी हमारे उन एहसासों को आवाज देता है जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह पाते। और दिल की बात हो तो रिश्तों का जिक्र भी होना ही है, क्योंकि किसी का प्यार दिल को सुकून देता है तो किसी की बेरुखी वही दिल तोड़ भी देती है। दिल टूटने का दर्द शायद हर इंसान ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, लेकिन जिंदगी की खूबसूरती यही है कि दिल टूटने के बाद भी धड़कता रहता है और हमें फिर से जीना सिखाता है। इसलिए अपने दिल को सिर्फ दुखों की यादों में मत भरिए। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी चीजें चुनते हैं, उसी तरह मन के लिए भी प्यार, दोस्ती, हंसी और सकारात्मकता चुनिए। और अगर कभी कोई दिल तोड़ भी दे तो उस टूटे हुए दिल को हमें संभालना भी सीखना होगा, क्योंकि जिंदगी किसी एक रिश्ते या दुख पर नहीं रुकती।

0: किसी जरूरत के लिए पैसे। SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा साड़ीज, ये रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
2: मैं तो टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
2: ऐ तो फिर यार नार वाली गल होगी।
3: नशा करने लिए मजबूर करने वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन होंगे। नाले ए तेरी सुइया सांझी करने नाल तेनू HIV का भी खतरा हो सकता है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम का हिस्सा बनो ते दोस्तों का भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होने का शक है तो सरकारी हॉस्पिटल विच HIV का टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लिए डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी वालों जनहित विच जारी।

आप सुन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आर भट्ट का जीरो। इस फिल्म के गाने के साथ आवाजें सचित तंबन और परंपरा टंबन के गीतकार और संगीतकार हैं मैं भरद्वाज।

अगली पेशकश नाना पाटेकर, शान और साथियों की आवाजों में बदमाश फिल्म से गीतकार है सुनील सरवैया और संगीतकार है मोंटी शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे नाना पाटेकर शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म का गाना। वीर भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर हो।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए श्वेता पंडित की आवाज़ में एंजल फिल्म का गाना। शब्बीर अहमद हैं गीतकार और संगीतकार हैं अमजद नदीम।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया

0: देंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार दिव्यांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए विशाल मिश्रा, नकश अजीज, अंतरा मित्रा की आवाजों में भूत बंगला फिल्म का गाना। कुमार के हैं बोल और प्रीतम की है तर्ज़।

श्रोताओं, आज है विश्व हृदय दिवस। हृदय मानव शरीर का अति महत्वपूर्ण अंग है। ये निरंतर रक्त का संचार करके शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाता है। आधुनिक जीवन शैली, असंतुलित खान पान, तनाव, शारीरिक निष्क्रियता, धूम्रपान और बढ़ते प्रदूषण के कारण हृदय संबंधी रोग आज विश्वभर में गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन चुके हैं। हृदय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। समय पर स्वास्थ्य की जांच और उचित जीवन शैली अपनाकर हृदय रोगों के अनेक जोखिमों को कम किया जा सकता है। हृदय को

0: स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। साथ ही नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और तनाव का उचित प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनसे बचकर रहें। और तो अपने दोस्तों, अपने शरीर का भी ध्यान रखें और साथ में हृदय का भी ध्यान रखें, और तनाव मुक्त रहने के लिए देश की सुरी धड़कन विविध भारती को सुनते रहें। तो चलिए आपको एक संदेश सुनवा देते हैं।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
4: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
5: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
4: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
6: अगर तुम मिल जाओ।
4: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
7: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
8: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
7: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
8: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
9: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
10: मैं तो टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
11: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
10: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
11: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
12: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
13: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए मीत ब्रदर्स अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में बागी फिल्म का गाना कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स की है तर्ज़।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओ, अभी संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिर फिल्म का गाना। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए करण शेम्बी की आवाज में लुका छिपे फिल्म का गाना। निर्माण है गीतकार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, अर्थात खाद्य की हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों फसलों की कटाई से लेकर भंडारण तक खाद्य पदार्थों की हानि होती है, साथ ही बड़ी मात्रा में तैयार किए गए भोजन की भी बर्बादी होती है, जबकि पूरे विश्व में करोड़ों लोगों को भूखे सोना पड़ता है। अतः ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक स्तर पर खाद्य पदार्थ की बर्बादी को रोकें। इस वर्ष की थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं खूबसूरत फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: एक विलक्षण गायक।
5: अरे ओरे हे।
4: संगीत के साधक।
5: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
4: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
5: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
4: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
6: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
4: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में ओ रोमियो फिल्म के गाने के साथ। गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज की है तर्ज

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच, आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार। आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
5: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
6: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
5: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
6: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
7: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: आज का अखबार। आज का अखबार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर की ओर से सवेर वाली नमस्ते है जी। और सुनाइए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह आज भी हमारी यही दुआ है, आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी का सफर तय करें। दोस्तों, आज सबसे पहले बात दिल की, जो बिना रुके, बिना थके दिन रात हमारे लिए धड़कता रहता है। आज है विश्व हृदय दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने दिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आज की भागदौड़ की जिंदगी, काम का तनाव, घंटों बैठे रहना, अनियमित खान पान, गलत लाइफस्टाइल, देर रात तक जागना, कम नींद और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये सब हमारे दिल के स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन भी हमारे दिल पर बुरा असर डालता है। दिल को तंदुरुस्त रखना है तो नमक और चीनी का सेवन कम करें, फाइबर और प्रोटीन युक्त भोजन करें, सप्ताह में 4-5 दिन 35 से 40 मिनट पैदल चलें, भरपूर नींद लें, योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने स्वास्थ्य की

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में बारी है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों की। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान, प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब करने का लक्ष्य। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत, श्री शंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
6: आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार, और कार्यक्रम में अब बारी है रीजनल और लोकल हेडलाइंस की। पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव ने कहा कि जालंधर की LPU के मुद्दे पर पुलिस जांच शुरू कर दी गई है, दंगा करने या करवाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब राज्य महिला आयोग ने दो यूनिवर्सिटीज की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेकर मांगी विस्तृत रिपोर्ट।

पंजाब में 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे धान खरीद सीजन से पहले केंद्र ने पंजाब के लिए 42,786.68 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा मंजूर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कंपनियों, फर्मों और ठेकेदारों को अदायगी में विलंब होने पर ब्याज सहित भुगतान की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान प्रावधान योजना लागू की। हरियाणा में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू होगी। इस बार 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में नशे के खिलाफ 3 लक्ष्य तय, युवाओं पर फोकस, हर साल होगी समीक्षा, नशे की रोकथाम को सरकार ने गठित की संकल्प सोसाइटी। मनमाजरा में 5 राज्यों के लिए बनेगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा। हाउसिंग बोर्ड चौक के पास 6 एकड़ में इंटीग्रेटेड टर्मिनस बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा नगर निगम। चंडीगढ़ में अनूठा प्रयोग, बिना सड़क खोदे 1,263 किलोमीटर सीवर लाइन दुरुस्त की जाएगी। और नीति आयोग के मेंबर प्रोफेसर गोवर्धन दास पहुंचे चंडीगढ़, कहा एआई से नौकरियां खत्म नहीं होंगी, काम करने का तरीका स्किल बदलेंगे। ये थी रीजनल और लोकल हेडलाइंस।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर।

0: दिसंबर 2026 तक। तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मैदा टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: आज का अखबार कार्यक्रम में अब बात करते हैं जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की। दोस्तों, देश के हर जिले की अपनी एक खास पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी है। इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की। इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इस अभियान के पायलट चरण में चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है। अब आपको बता दें कि पंजीकरण कैसे करना है। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, लॉगिन करें, मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और सबमिट करें। एंट्रीज अब 30 सितंबर यानी कल तक स्वीकार की जाएंगी। तो देर मत कीजिए, अपने शहर, गांव या ज़िले की किसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी को कैमरे में कैद कीजिए और बनिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का ये कार्यक्रम आज का अखबार समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए

0: ने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: आज का अखबार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को भी कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अन्वेषण निदेशक ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि E20 पेट्रोल पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को काफ़ी हद तक कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद कर सकता है। श्री सिन्हा अहमदाबाद में ONGC जलाशय अध्ययन संस्थान में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2027 के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल एक चुनौती है, लेकिन प्रौद्योगिकी के साथ इसका समाधान भी निकलेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के $863 अरब से बढ़ाकर $1,00,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब $100 अरब हो गया है।
1: The comprehensive economic partnership, व्यापक आर्थिक

0: साझेदारी समझौते को 4 साल हो गए हैं। हमने इस द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 100 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है और मैंने 2032 तक इसे दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। संयुक्त अरब अमीरात को भारत पर भरोसा है। उन्होंने पहले ही 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सातवे सबसे बड़े स्रोत हैं। आने वाले वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात से निवेश को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।
1: भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना के आधिकारिक एक्सहैंडल ADGPI पर पोस्ट में इस मुलाकात की जानकारी दी गई है। ADGPI ने पोस्ट करते हुए लिखा, इंडिया US फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को लगाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने आज महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। इससे शूटिंग में देश के मेडलों की संख्या 13 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
3: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
4: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
3: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
4: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
3: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
4: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
5: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
5: जग घूमे आधार जैसा ना कोई,
4: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
3: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
4: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
6: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म के गीत से। आवाजें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत को लिखा है महबूब ने, संगीतकार हैं इस्माइल दरबार।

0: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीलासा।

आइए अब सुने मिस्टर आशिक फिल्म का गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल इंदिवर के हैं, संगीत है जतिन ललित का।

कार्यक्रम का अगला गीत रॉकी फिल्म से है। इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: आइए अब सुनते हैं जूली फिल्म में किशोर कुमार को। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

जब सुनिए, यही है जिंदगी फिल्म का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। संगीत है राजेश रोशन का।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीलासा। फिल्म संगीत के बाद इस कार्यक्रम में अब बारी है गैर फिल्मी रचनाओं की। सबसे पहले आइए सुनते हैं हैरी आनंद की आवाज में विक्की नागर का लिखा ये गीत।

घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से।

0: SBI, the banker to every Indian. नियम और शर्तें लागू.
1: कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में है. इस गीत को लिखा है मजरूह ने.

0: रागेश्वरी के गाए इस गीत के साथ ही अब आज का सफर सुरीला सा कार्यक्रम समाप्त होता है। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: अब

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम FM लाइफलाइन।
3: FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।
4: फोन इन प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अनिल पुंज। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमने टॉपिक चुना है स्मोकिंग। धूम्रपान कितना हमारे लिए खतरनाक है, इसके बारे में जागरूक करने के लिए, इस विषय पर आपके सवालों के जवाब देने और अधिक जानकारी हमसे शेयर करने के लिए आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी नायक, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री और ब्रेन स्टिमुलेशन की एक्सपर्ट PGI चंडीगढ़ से। हम सबसे पहले डॉक्टर शालिनी नायक जी का इस प्रोग्राम यानी FM लाइफलाइन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
5: थैंक यू अनिल जी फॉर हैविंग मी हियर।
4: स्मोकिंग क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, उसे किस तरह से छोड़ा जा सकता है और क्या किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे आपसे। लेकिन इस प्रोग्राम में हमारे श्रोता जो हैं वो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, पहले उनके सवालों का जवाब दे दें आपके द्वारा, उसके बाद हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे।
5: जरूर जी।
6: हेलो,
4: प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है जी। नाम बताइए अपना, जगह का नाम।
6: हाँ जी, नरेंद्र कपूर जी।
4: हाँ जी, कहाँ से?
6: नाम नरेंद्र कपूर, डेरा बसी से बोल रहा हूँ जी।
4: डेरा बसी से कपूर साहब, क्या हाल है आपके?
6: ठीक है सर।
4: अच्छा, आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: पहली बार जुड़ा हूँ जी, पहली बार।
4: कमाल की बात है, और जुड़े पहली बार है लेकिन सुनते तो रहते हैं ना?
6: सुनता रहता हूँ, आज पहली बार कोशिश की है कि मैंने सोचा था सिगरेट के बारे में।
4: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, धूम्रपान के बारे में कपूर साहब बात कर रहे हैं और डॉक्टर शालिनी नायक हमारे साथ हैं।
6: डॉक्टर साहब नमस्कार।
5: नमस्कार जी।
6: मैडम जी, मैंने ना सिगरेट 40 साल से पी रहा हूँ जी। 10 साल मैंने बीच में छोड़ रखी थी।
4: 40 साल से आप सिगरेट पी रहे थे और 10 साल के लिए आपने कपूर साहब बीच में छोड़ दी, कमाल की बात है।
6: उसके बाद फिर मेरे को दोबारा शुरू हो गई।
4: अरे अरे अरे अरे,
6: ऐसा ऐसा दोबारा शुरू हुई, उसको पीते हुए 8 साल हो गए। और
5: अच्छा,
6: पहले तो मैंने बगैर कोई दवाई के छोड़ दी थी सर, अब नहीं छूट रही। ज्यादा से ज्यादा एक दिन छूटती है, दूसरे दिन फिर लग जाती है तलब।
4: तो कपूर साहब, मैं एक आपसे बात कहना चाहूंगा, आपने कहा कि 10 साल आपने बीच में छोड़ी, तो वो आपने किस तरह से छोड़ी वो भी बता दीजिए ना।
6: बस खांसी उठती थी, एकदम छोड़ दी सिगरेट की डब्बी फेंक दी मैंने उठा के।
4: अच्छा अच्छा,
5: अच्छी बात। ये पूरा 40 साल का कंजम्पशन में ये है कि आप 10 साल के लिए सक्सेसफुली अपने आप छोड़ पाए हैं। वजह होंगी जैसे कि आपने एक फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम जो बताए, कॉफ करके खांसी के वजह से।
6: कोई नहीं है, खांसी नहीं रुकती थी, इसलिए वजह से मैंने छोड़ दी थी।
5: हाँ बिल्कुल, मगर दोबारा जब आप शुरू किए थे, अभी आपका सेहत कैसा?

0: लग रहा है आपको?
1: अभी शुरू शुरू में तो अच्छी नहीं लगती थी जी, कभी कभी कष्ट मार लिया, दो चार दिन बाद तो ऐसे करते करते शुरू होगी दोबारा, तो अब उसके लिए अब छोड़ ही नहीं आ रही, एक दिन के लिए छोड़ देता हूँ, अगले दिन फिर दिल कर जाता है।
0: हम बहुत मुश्किल लगता है आपको?
1: हाँ मुश्किल तो लगता है।
0: हम इसे विड्रॉल करके कहते हैं, जब रेगुलरली आप लेते रहते हैं ना, तो आपकी बॉडी को आदत हो गई रहती है इसके। तंबाकू के अंदर निकोटीन करके एक पदार्थ होता है,
1: हाँ जी
0: मेनली उसी का
1: बिल्कुल,
0: एडिक्शन होता है, ठीक है? तो वो
1: इसके लिए
0: शायद,
1: कोई मेडिसिन है जी?
0: हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है उसके लिए मेडिसिन।
2: कपूर साहब, आप पहले डॉक्टर साहब की बात पूरी सुन लीजिएगा।
1: ठीक है।
2: जी,
0: तो ये जो तंबाकू के अंदर निकोटीन जो है ना, वो अपने दिमाग के ऊपर काम करता है, उसी के कारण ये एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है और शरीर भी डिपेंड हो जाता है। जब आप अचानक छोड़ देते हैं तो वो काफी सडनली बॉडी को ऐसा होता है कि बिना निकोटीन का उसको रहना पड़ रहा है। तो आप काफी बारी ऑब्जर्व किए होंगे कि आप इरिटेटेड हो जाते हैं जिस दिन आप स्मोक नहीं किए रहते हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: हाँ
0: वो,
1: इरिटेट हो जाता
0: हाँ क्योंकि वो माइंड में बिना निकोटीन का रहना, तो वो रेस्टलेस हो जाता है और शरीर भी बहुत रेस्टलेस हो जाता होगा। आप एक जगह पे नहीं बैठ पाते होंगे, बहुत अनईजी वाला फीलिंग होता है शरीर में
1: जी हाँ,
0: किसी चीज के
1: गैस भी
0: ऊपर।
1: बनने लग जाती है सर।
0: हाँ जी हाँ जी, पर्टिकुलरली सुबह के वक्त आपको टॉयलेट जाने में दिक्कत होती है सर, जब छोड़
1: जी
0: देते
1: हाँ
0: हैं तो?
1: जी हाँ
0: हाँ
1: जी, टॉयलेट जाने में दिक्कत होती
0: हाँ
1: है
0: जी हाँ जी, वो भी एक रीजन होती है। जब निकोटीन शरीर में से निकल जाता है तो कब्ज हो जाती है,
1: जी।
0: दिमाग में भी कंसंट्रेट किसी चीज पे करना मुश्किल होती है, नींद कम होना, भूख ज्यादा लगता है, वेट गेन होना लगता है, ये सारी चीजें हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं सर, ठीक है? आप अचानक अगर छोड़ देंगे तो ये विड्रॉल सिम्टम्स के वक्त क्या होता है, ये क्रेविंग जो हम कहते हैं ना, तलब या तोड़
2: जी
0: होना, ठीक है? इन चीजों को मैनेज करना अपने आप ही बहुत मुश्किल होता है। दो रकम के ट्रीटमेंट है जो कि आप एक्चुअली पूछ रहे थे इस कॉल में। एक तो काउंसलिंग है सर, जिसमें हम आपको ये तलब को कैसे मैनेज करना है, ये सारे
1: हाँ
0: विड्रॉल
1: जी
0: सिम्टम्स को अपने आप कैसे मैनेज करना है, ये चर्चा किया जाता है बहुत विस्तार रूप में। काफी सारे सेशंस लेते हैं हम, 6 से 10 सेशंस, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जरूरत कितना है। और दूसरी दवाइयाँ, दवाइयाँ मतलब एक है जो निकोटीन मैंने बोली है, केमिकल जो तंबाकू में रहता है, वो निकोटीन आपके शरीर में से निकल जाने की वजह से ये विड्रॉल हुआ है ना, तो वो निकोटीन
1: जी
0: रिप्लेस कर सकते हैं हम आपके बॉडी में, ताकि आपको ये विड्रॉल ज़्यादा महसूस ना हो, वो
2: परेशानी ना हो।
0: परेशानी ना
2: जी
0: हो।
2: जी
0: बिल्कुल
2: आराम से आप इस आदत को छोड़ पाएं।
0: हाँ जी
2: जी
0: हाँ
2: जी
0: जी,
2: जी
0: जैसे कि निकोटीन थे च्यूइंग गम के रूप में और लोसेंजस के रूप में आते हैं।
2: जी कपूर साहब,
1: हाँ जी हाँ
2: जिस तरह से डॉक्टर नायक ने आपको बताया, काउंसलिंग करते हैं, इसके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक बार पीजीआई विजिट करें
1: ठीक है
2: और
1: सर।
2: वहाँ डॉक्टर साहब से मिलें और तमाम जो जानकारी है इत्मीनान से आप वहाँ से
1: ठीक
2: लें।
1: है सर
2: लेकिन जो आपने विल पार दिखाई थी ना अपनी, वो 10 साल जो
1: जी।
2: छोड़ा है आपने, जो इच्छा शक्ति है छोड़ने की,
1: हाँ
2: उसे
1: जी हाँ
2: और
1: सर,
2: प्रबल बनाइए।
1: एज के हिसाब से उस वक्त तो छोड़ दी, अब नहीं छोड़ी जा रही, अब
2: हाँ
1: मेरी
2: नहीं, अब
1: 60
2: भी छूट सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
1: 60 साल
2: बाकी
1: की उम्र
2: डॉक्टर
1: होगी
2: आपको पीजीआई में बैठे हैं, आप
1: आपकी
2: जरूर
1: तकलीफ
2: जाएं और
1: है,
2: दिखाएं उनको, आपको एक रास्ता
1: हंसी और
2: मिलेगा।
1: बलगम रहने लग गया, पर आदत नहीं छूटी सर।
2: जी बहुत बहुत
1: कोई डे
2: धन्यवाद
1: होता है,
2: आपका बात
1: स्पेशल डे
2: करने के
1: होता है,
2: लिए।
1: खास दिन होता है जी, किसी भी डे आ सकते हैं।
0: आप सोमवार से लेके शनिवार तक किसी भी
1: ठीक है
0: दिन
1: सर,
0: आप आ सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हमारी ओपीडी
1: ठीक है
0: रहती
1: सर, ठीक है डॉक्टर सर।
2: है। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी
3: यश कुमार वर्मा के, प्यार भरी नमस्कार।
2: यश भाई, कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत
2: अरे
3: अच्छे
2: आज के
3: हैं
2: इस टॉपिक में आप कैसे?
3: जी।
2: आपका तो दूर दूर नाता नहीं।
3: नहीं पर मैं आपको ना कुछ
2: हाँ
3: सुझाव देना चाहूंगा, और मेरे
2: बिल्कुल
3: जो
2: बिल्कुल
3: सास
2: बिल्कुल।
3: में है ना,
2: जी,
3: मैं उनको मतलब ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से।
2: अब बिल्कुल पूछिए, मैं तो आपसे जरा सा मजाक
3: जी
2: किया
3: जी जी
2: था।
3: नहीं, वो तो सही बात है आपकी, मैं भी सोच रहा
2: हाँ
3: था मेरा टॉपिक तो है नहीं, चलो फिर भी
2: जी जी
3: ऐसा
2: जी
3: होता है ना कि
2: बिल्कुल
3: जिसके साथ
2: बिल्कुल।
3: जुड़े रहते हैं हम उनको, जैसे
2: नहीं,
3: रेडियो
2: यू आर
3: पर
2: वेलकम वेलकम। और
3: जी।
2: डॉक्टर शालिनी नायक हमारे साथ हैं, स्मोकिंग पर जानकारी दे रही हैं, ये क्यों होती है, इसे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, आप अपना
3: अच्छा
2: सवाल
3: मुझे
2: करें।
3: पहले पहले ये बताइए, अनिल शालिनी नायर हैं या नायक हैं? नायर
2: शालिनी
3: तो ना।
2: नायक,
3: हाँ जी
2: असिस्टेंट
3: हाँ,
2: प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, पीजीआई, चंडीगढ़।
3: तो मैंने इनके ऊपर ना लाइनें लिख दी, कोई नाम तभी क्लियर कर रहा था। एक तो मैं कहूंगा
2: आपके
3: कि
2: लिए कुछ
3: बीपी,
2: लाइन

0: लिखी इन्होंने डॉक्टर साहब यश जी ने,
1: अच्छा।
0: पहले वो ये बताना चाहते हैं,
2: उम्र पाने के ऊपर ही है।
0: हाँ हाँ बताइए बताइए।
2: हाँ, पीते पीते कहीं भी लगा देते हैं ये फायर, काम करना बंद कर देते इनकी बॉडी के कई वायर
0: जी,
2: चलने फिरने के लायक नहीं रहते इनके दोनों टायर, घर वाले रोज धमकी देते कंप्लेंट करानी है जाकर आज दायर, अपनी हद पार कर बन जाते हैं यह पूरे कायर, इससे अच्छा तो यह बन जाएं छोटे या बड़े शायर, आपका कहा नहीं मानने वाले जल्दी हो जाते फिर एक्सपायर। एफएम लाइफलाइन में आए हैं आज इसी पर समझाने डॉक्टर शालिनी नायर।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। और जहां आपने एक्सपायर की बात की ना, बस वही उस मुद्दे पर बात होती है, काम होता है कि वो स्थिति ना आए।
1: बोलिए।
2: हाँ। नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आप बहुत बढ़िया लिखे हैं।
2: तो मतलब मैं ये ना, मैं चाहता हूँ कि जो धूम्रपान के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं ना, मैं भी चाहता हूँ कि धूम्रपान बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि मैं तो इससे बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन जो मेरे साथी है ना परिवार में, वो जुड़े बहुत पीते हैं, 20-20 सिगरेट पी जाते हैं, मुझे बड़ा दुख आता है, मैं समझाता हूँ उनको। तो नील भाई यही कहूंगा कि जैसे मेरे साथ वाले दो डिब्बी है, मतलब दो सिगरेट की डिब्बी है, 20 सिगरेटें होती हैं, वो घंटे घंटे में आधे घंटे में पी जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको कैसे समझा पाऊँ, कैसे समझा पाऊँ कि वो इस पूरी बीमारी से बहुत दूर हो जाएं।
0: ये समझाना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि इनके जो दोस्त हैं वो डिब्बी पे डिब्बी सिगरेट की पिए जाते हैं, तो इनसे देखा नहीं जाता, ये उन्हें समझाना चाहते हैं, कैसे समझाएं। और डॉक्टर साहब की बात को सुना जाए, डॉक्टर साहब इनके मैसेज में और इतनी प्यारी इन्होंने लाइनें लिखी, पहले तो इनका धन्यवाद करते हैं, एक तरह का मैसेज इन्होंने दिया। इनके सवाल में, इनकी बातों में बहुत सारे सवाल थे,
1: बिल्कुल,
0: आप कुछ संक्षिप्त में बता दीजिए क्या कहना चाहेंगे।
1: कोशिश भी करे कि वो छोड़ दे स्मोकिंग को, तंबाकू को। एनवायरमेंट में क्या क्या है, पेड़ पौधे हैं, समुन्दर के सारे प्राणी हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सब भी हैं। ओके, ये स्मोकिंग का जो है, स्मोक के साथ साथ अगर मुझे समझाना है चार डिफरेंट वेज में कैसा ये इम्पैक्ट करता है, ये तंबाकू का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है उस चीज़ के लिए 300 सिगरेट बनाने के लिए एक बड़ा 30 फीट पेड़ को कट करना पड़ता है, उसका इस्तेमाल होता है,
0: इतना नुकसान होता है।
1: हाँ, और मानो कि अभी मार्केट ऐसा है कि 100 करोड़ सिगरेट बिकते हैं साल में, तो कितने पेड़
0: काटे जाते
1: होंगे हम समझ सकते हैं। और दूसरी लेवल पे ये होता है कि ये पूरा तंबाकू का पैकेजिंग जो रहता है, वहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, पेपर का इस्तेमाल होता है, अपने एनवायरमेंट में बहुत कुछ नुकसान होती है। तीसरा लेवल पे आके यूसेज, जो कि तंबाकू ये स्मोकिंग जो रहता है उसमें एक ही केमिकल नहीं, टोटल 7,000 केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल ऐसा है कि जो इंसान स्मोक करता है उसे फर्स्ट हैंड स्मोकिंग कहते हैं, उनको तो डेफिनेटली नुकसान होगा, और उनके बाजू में रहते हैं और
0: आसपास
1: में जो रहते हैं, जब वो हवा को ये ब्रीथ करते हैं उसे सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। ये इतना ही नहीं बल्कि जब मानो और स्मोकर उस जगह से हट भी जाए, वो वातावरण में वैसे ही रहता है ये सारे केमिकल्स बहुत घंटों के लिए, दिनों के लिए, उसे थर्ड हैंड स्मोकिंग कहते हैं।
0: जी यश जी, अच्छी जानकारी मिली गई होगी, और फिर से अगर आपको कोई नाराज हो आपके समझाने पर, आप उनसे कहिएगा कि देखिए ये एनवायरनमेंट पे इसका असर है, कल को आप अगर अपने घर के भीतर पियेंगे तो आप अपने घर के पूरे एनवायरनमेंट को दूषित करेंगे।
1: हाँ।
0: सही है डॉक्टर,
2: इनकी बात सुनकर ये लगा कि अगर मैं पीता होता ना सिगरेट तो मैं अभी कसम से छोड़ देता कि भाई इतना मैं प्रदूषण खराब कर रहा हूँ देश
0: के। डॉक्टर हमारे
1: सब आपके जितने रिस्पॉन्सिबल होते।
0: प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है जी।
3: हाँ जी, नमस्कार अनिल जी।
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
3: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ।
0: अच्छा बेदी जी, डॉक्टर शालिनी नायक हमारे साथ हैं।
3: हाँ।
0: और जल्दी से अपना सवाल कीजिए, क्योंकि वो बहुत कुछ बताना चाहती हैं और हम भी चाहते हैं कि आज सब कुछ पूछ लें।
3: ठीक है। हेलो।
1: हेलो जी, मैडम जी।
3: नमस्कार डॉक्टर।
1: नमस्कार मैडम जी।
3: डॉक्टर देखिए, स्मोकिंग के लिए एक इलाज है पैचेस, पर वो ट्रीटमेंट बड़ा एक्सपेंसिव है।
1: हाँ जी,
3: क्योंकि मेरे ब्रदर बहुत स्मोक करते थे, तो एक बार US गए तो वहाँ मेरी सिस्टर ने पैचेस से ट्रीटमेंट कराया। तो एक महीने बाद जब वो कार में एंटर किए तो उसने कहा किसी ने स्मोक तो नहीं किया, मुझे बड़ी नफरत है स्मोकिंग से। तो इलाज तो ये पक्का है, पर ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता।
1: हाँ।
3: थोड़े सस्ते तरह से मिले पैकेट, ताकि लोग स्मोकिंग जैसे जहर से बच जाएं।
0: डॉक्टर साहब,

0: जवाब देने से पहले मैं भी ये चाहूंगा कि ये इलाज है क्या, ये भी बता दीजिए।
1: जैसे पिछले कॉल में हमने निकोटिन रिप्लेसमेंट करके जो बात किए हैं, वैसे वो गम्स के रूप में आते हैं, लोसेंजस के रूप में आते हैं और पैच के रूप में आते हैं। इन सब में से पैच बहुत महंगा होता है। पैच का एडवांटेज ये है कि बस वो एक स्किन के ऊपर हम लगा देते हैं उसको, और वो थ्रू आउट द डे उसमें से निकोटीन रिलीज होते जाता है धीरे धीरे।
0: तो कहाँ लगाते हैं स्किन में, कहाँ लगाते हैं
1: स्किन पे? अक्सर हम हाथों पे, बैक साइड, पीछे चेस्ट रीजन में, और जहाँ पे बाल कम होते हैं उन जगहों पे हम लगाते हैं। वो सुबह स्नान करने के बाद उनको लगाने के लिए कहते हैं, ताकि वो 24 घंटे
0: लगा रहे।
1: हाँ, लगे रहें। वैसे मैं मानती हूँ मैडम जी कि पैचेस बहुत महंगा है, मगर अक्सर हम गम्स इस्तेमाल करते हैं, च्यूइंग गम्स, वो अफोर्डेबल रहता
2: है। सामने मेरे नेबर है, क्योंकि पैसिव स्मोकर ज्यादा हार्मफुल होता है उसके लिए।
1: बिल्कुल,
2: एक्टिव से ज्यादा पैसिव सफर करता है।
0: जी जी जी,
2: वो सिगरेट पी रहा था तो उसकी बेटी ने ऐसे हाथ से धुआं पीछे किया ना, तो उसके दिल को इतनी बात लगी, उस दिन से उसने सिगरेट ही छोड़ दी।
0: बिल्कुल,
2: यहाँ फ्लिक ऑफ टाइम या ट्रीटमेंट,
0: ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बेदी जी आप। मुझे भी लगता है कि जब दिल पे लगती है ना, तब आदमी इसे छोड़ देता है अचानक से।
2: जब तक हमारे दिल को नहीं लगेगी, कोई भी सुधार नहीं हो सकता।
0: अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेदी जी।
2: हाँ जी, थैंक यू जी।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता रहे थे कि दिल पे जब लगती है, या हम दिल पे लगने की बात कह रहे थे, कोई भी काम हो जब दिल पे लगता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम उसे छोड़ देते हैं, पॉजिटिव को करने लग जाते हैं। आप ये बताइए कि जब हम स्मोकिंग करते हैं तो उससे हमारे शरीर पर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं और क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है?
1: बहुत सही सवाल पूछे हैं अनिल जी आप। स्मोकिंग अपने शरीर में हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। इनफैक्ट ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो वो खर्चा कर रहे हैं पैसे, वो सिर्फ सिगरेट खरीदने के लिए नहीं, अपने ऑर्गन्स का जो डैमेज हो रहा है उसके लिए भी वो पैसे पे कर रहे हैं। और वो इतना ज़्यादा कॉस्ट है स्मोकिंग सिगरेट्स का, कि वो तो सिगरेट का कॉस्ट एक है, दूसरा अपने बॉडी ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि स्मोकिंग अगर छोड़ दे तो बहुत सारे चीज़ें कम हो सकती हैं उस इंसान में, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, 12 डिफरेंट ऑर्गन्स में वो कैंसर कॉज करता है। और ऐसा भी है कि वो हम वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉजेज फॉर डेथ करके भी हम कहते हैं। 1 in 5 डेथ्स आर ड्यू टू स्मोकिंग।
0: स्मोकिंग,
1: यस। एंड लंग कैंसर्स, 10 लोगों में जब लंग कैंसर होता है, 9 लोगों में स्मोकिंग हिस्ट्री पाया जाता है। उतना कॉमन कॉज है। और औरतों में भी, जब हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनमें स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर से भी। और स्ट्रोक आप शायद सुने होंगे, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक करके, ये दोनों रकम के स्ट्रोक्स 4 गुना ज्यादा होता है जो स्मोकिंग करते हैं।
0: रिस्क, उसके पीछे जो कारण है वो स्मोकिंग का है।
1: स्मोकिंग का है। और कैसा एग्जैक्टली करता है ये पूरा स्ट्रोक? एक ऐसा है कि ब्लड सप्लाई कम कर देता है वो बॉडी ऑर्गन्स को, और दूसरा के स्मोकिंग खून क्लॉट होने में
0: जमने लगता है।
1: जी जी। तो उस वजह से दोनों के कारण स्ट्रोक हो जाता है, उस ब्रेन एरिया को या हार्ट एरिया को ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है या कम हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने अपनी बातचीत में महिलाओं का जिक्र किया, तो आमतौर से पुरुषों की बात होती है स्मोकिंग को लेकर। आप मुझे ये बताइए कि महिलाएं जाने अनजाने में जब स्मोकिंग करती हैं तो क्या बुरा प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है, उनकी सेहत पर पड़ता है, और क्या हो सकता है गर्भावस्था में भी स्मोकिंग करती?
1: आपने जो सवाल पूछे बहुत सीरियस मैटर है सर। आजकल महिलाएं भी स्मोकिंग करना शुरू की हैं, और ये शुरू करने के पहले महिलाएं सेकेंड हैंड स्मोकिंग करके, हम जो कहते हैं, जो घर पे उनके हस्बैंड या बाकी, तो वैसा सेकेंड हैंड स्मोकिंग का एक्सपोजर पहले था उनको, और आजकल फर्स्ट हैंड स्मोकिंग भी ज़्यादा हो रहा है। मगर दोनों का उनके हेल्थ के ऊपर प्रभाव तो डेफिनेटली है। एक तो खुद के लिए यूट्रेन सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा होता है उनमें, और स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा है
0: जी।
1: और लंग कैंसर, ये सारे उनमें प्रॉब्लम्स होंगे। दूसरा आके जो आपने पूछे थे प्रेग्नेंट महिलाएं में क्या होता है, क्या बच्चों पे असर पड़ता है, बिल्कुल सर। एक होता है प्रीटर्म लेबर,

0: पूरा प्रेगनेंसी का टर्म होने के पहले ही डिलीवरी हो जाना, अर्ली डिलीवरी।
1: अच्छा, उसका कारण ये स्मोकिंग होता है?
0: स्मोकिंग होता है, और स्टिल बर्थ करके, जब बच्चे का डिलीवरी के पहले ही पेट के अंदर ही उनका डेथ हो जाना स्टिल बर्थ, ये चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं जब स्मोकिंग करते हैं फर्स्ट हैंड या सेकेंड हैंड। और बच्चे का वेट भी बहुत कम हो जाता है, लो बर्थ वेट बेबीज, उनका बॉडी वेट 2 किलो से भी कम होता है बर्थ के टाइम पे।
1: और बच्चे के लिए भी मुश्किल है,
0: बहुत मुश्किल है उनको जब पैदा होते हैं, वो पूरा

0: ये भी ज्यादा होता है,
1: ये भी ज्यादा होता है।
0: हाँ जी,
1: तो इसका इलाज हो जाता है वैसे?
0: इनके इलाज तो है, ओरोफेशियल क्लेफ्ट का इलाज है,
1: लेकिन जो बाय बर्थ प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक रहती होगी।
0: रहती होगी
1: जी।
0: बेबीज के दिमाग के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब माँ को एडिक्शन होता है, ऐसा है कि बच्चे को भी एडिक्शन हो जाता है, और पैदाइश के टाइम पे उनको विड्रॉल हो जाती है बेबीज में, पहले मंथ में उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है वो सब सहना।
1: मतलब एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे स्मोकिंग से तो बचना ही है, एक्टिव से भी बचना है, और सेकंड हैंड जो आपने बताई पैसिव स्मोकिंग है उससे भी अपने आप को बचा के रखना है।
0: बिल्कुल,
1: अपने को भी और अपना जो भविष्य वो पाल रही हैं उसे भी बचा के रखना है।
0: हाँ जी।
1: तो धुआं मतलब इतना खतरनाक है, धीरे धीरे ये जो नुकसान पहुंचाता है। तो डॉक्टर साहब, हमने स्मोकिंग के बारे में आपसे बात की, आपने बताया, और वाकई बातें सुन के मुझे लगता है कि जो पीता होगा आज से वो तौबा कर लेगा और कानों को हाथ लगाएगा कि मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा। अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं, इलाज का तरीका क्या है। जब आपके पास कोई पेशेंट ओपीडी में आता है तो इलाज करने का क्या तरीका होता है? आप क्या काउंसलिंग करते हैं, दवाइयां देते हैं, या उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं? थोड़ा सा हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से समझा दीजिए।
0: हम उनको काउंसलिंग करते हैं, ये हर पेशेंट का काउंसलिंग होता है हमारे ओपीडी में। साथ साथ कुछ पेशेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन उनका कितना एडिक्शन है, वो सीवियरिटी लेवल को लेके हम नेक्स्ट मेडिकेशन का ट्रीटमेंट भी प्लान करते हैं। कुछ लोगों को विड्रॉल ज़्यादा हो जाता है, उनको हम निकोटिन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बावजूद भी जब नहीं छोड़ पाते हैं तब हम कुछ टैबलेट्स भी है एडिक्शन को लेके पर्टिकुलरली, वो दिया जाता है। और नया एडवांस्ड फैसिलिटी भी पीजीआई में अभी अवेलेबल है जो कि ब्रेन स्टिमुलेशन। कुछ पेशेंट्स में इन सारे ट्रीटमेंट के बावजूद भी जब नहीं छोड़ पाते हैं तब हम ये ब्रेन स्टिमुलेशन का ट्रीटमेंट भी देते हैं।
1: बेटर है कि जितनी जल्दी आदमी आपके पास पहुंच जाए तो उतना बेहतर रहता है।
0: बिल्कुल।
1: और डॉक्टर साहब, बच्चों में जब ये आदत बननी शुरू होती है तो अमूमन पेरेंट्स को मालूम नहीं चलता, वो चोरी छुपे स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह क्या होती है और उसे छुड़ाने का तरीका क्या है?
0: अक्सर ये बच्चे हाई स्कूल के होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ स्मोकिंग शुरू करते हैं, उनको शौक होती है कि दोस्तों के साथ दोस्ती बनाने के लिए एक रहता है कारण, दूसरा उस उम्र में अटेंशन पाने के लिए भी करते हैं, तीसरा ऐसा है कि काफ़ी सारे फिल्मों में हीरोज विलन उनका स्मोकिंग दिखाया जाता है तो इनको वो एक साइन ऑफ हीरोइज्म करके भी लगता है दिखाने के लिए। तो इन सारे कारण की वजह से बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं स्मोकिंग के तरफ। मगर इसे स्मोकिंग को हम गेटवे ड्रग भी कहते हैं क्योंकि जब इससे शुरू होता है धीरे धीरे उनको बाकी के लत होने का भी रिस्क,
1: बाकी नशे करने की आदत हो जाती
0: हो जाती है।
1: तो पेरेंट्स कैसे देखें, किस तरह से बिहेवियर को समझें कि हाँ कुछ ही अलग कर रहा है या कुछ बता नहीं रहा है? कुछ आपके ओपीडीज में ऐसे केसेस आते होंगे?
0: हाँ जी, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्ती बना के रखे, पर्टिकुलरली टीनेज बच्चों के साथ दोस्ती बने रखना ज़रूरत है। इस उम्र में उनको बहुत सारे रिस्क होता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी वो शायद नशे की तरफ बढ़ते होंगे, तो इन सारे कारणों के लिए पेरेंट्स उनके साथ दोस्ती बना के उनके साथ बातें करना जरूरत है और
1: एक फ्रेंडली माहौल बना
0: बनाना जरूरत है, उनके साथ ये नशे के बारे में चर्चा भी करना जरूरत है।
1: तो ये आदत तो बहुत बुरी आदत है, एक बार ये आदत पड़ जाए तो छोड़नी मुश्किल होती है?
0: मुश्किल होती है, मगर हर बारी हमारे लाइफ में चॉइसेस भी होती है, छोड़ने का भी एक चॉइस बना सकते हैं।
1: अगर कोई छोड़ना चाहे तो एक दो बातें बताइए, क्या करना है? डॉक्टर के पास तो जाना है अपने तौर पर, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद ये डिसाइड नहीं करता कि हाँ मैंने इस लत को छोड़ना है तब तक वो बात बनती नहीं है, उसे खुद अपने आप क्या तैयारी करनी चाहिए?
0: अपने आप ऐसे कर सकते हैं कि एक क्विट डेट करके रहता है जो कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं कि ये मेरा डेट है जहाँ पे मैं ये आखिरी सिगरेट में स्मोक करूँगा। वैसे एक क्विट डेट तय करना है और रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं उनको विड्रॉल होता है, विड्रॉल को अपने माइंड में रखते हुए कुछ उनको मेजर्स लेना है जैसे कि फिजिकली एक्टिव रहना है, जो स्मोकिंग कर रहा था अपने दिमाग पे माइंड को उत्तेज

0: उत्तेजित जो कर रहा था, आप अपने आप अपने माइंड को और शरीर को उत्तेजित रखना जरूरत है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, आजकल मीडिया में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, वहाँ घुमा फिरा के बताया जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें फ्रेशनर्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं, क्या उनमें कंटेंट होता है टबैको का?
0: ज़्यादातर ये जो एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहे हैं फ्रेशनर के, उसमें तंबाकू होती है। वो ध्यान से उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लेना अच्छी होती है, क्योंकि ये एक रकम का सरोगेट एडवर्टाइजिंग करके कहा जाता है। क्योंकि आजकल अपना गवर्नमेंट बैन रखा है तंबाकू का, शराब का, इन सारे चीज़ों का एडवर्टाइज करने से बैंड है। उस वजह से काफ़ी सारे ये टोबैको इंडस्ट्री वाले एडवर्टाइज माउथ फ्रेशनर के थ्रू कर रहे हैं, तो इसलिए सावधान रहना ज़रूरत है।
1: अपने विवेक से हमें काम लेना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो बेहतर तो यही है कि तंबाकू को हम नो ही कहें।
0: हाँ जी,
1: ऑलवेज से नो।
0: यस
1: जी जी डॉक्टर, अब प्रोग्राम का समय लगभग हो चुका है और समाप्ति की ओर है, जाने से पहले आप धूम्रपान को लेकर संदेश देना चाहें हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
0: मैं यही कहूंगी कि जो स्मोकिंग करते हैं और वो छोड़ने के जब डिसीशन लेते हैं, वो सिर्फ अपने खुद के ही भला नहीं, वो अपने साथ जुड़े हुए
1: तमाम लोगों के लिए
0: भी, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट।
1: कि स्मोकिंग जब हम नहीं करेंगे तो अपने हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, और वैसे भी चंडीगढ़ नो स्मोक जोन में आता है और यहाँ स्मोकिंग करना जो है प्रोहिबिटेड है, तो ऐसे में हमें इन बातों का भी ख्याल रखना है और खुद हमें ये तय करना है कि स्मोकिंग से हमारा भला होता है कि यह हमारा नुकसान होता है। जब हम ये सवाल अपने आप से करेंगे, और आज जो बातें आपने बताई हैं इन बातों को सुनने के बाद मुझे लगता है जो कोई स्मोकिंग करता है आज वो उसे छोड़ेगा और कानों को हाथ लगाएगा, तौबा करेगा कि तौबा आए स्मोकिंग से। तो डॉक्टर शालिनी नायक, इस प्रोग्राम में पधारने के लिए, धूम्रपान पर अच्छी जानकारी देने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी।
1: दोस्तों, आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे डॉक्टर शालिनी नायक से, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री PGI चंडीगढ़, और डॉक्टर शालिनी नायक ब्रेन स्टिमुलेशन एक्सपर्ट भी हैं। तो आज हमारे साथ रहीं, हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह एक और विशेषज्ञ से आपकी और हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
2: FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।
1: अभी आपने FM लाइफलाइन कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: जहां रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई। स्वच्छता ही सेवा है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम है लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम। सुने हैं मित्रा दे, आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: सुनेहे मित्रां दे, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 12:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे मुंबई केंद्र से कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: हृदय दिल शब्द के गाने, आज विश्व हृदय दिवस है तो दिल शब्द के गाने 24 घंटे। इस फिल्म का ये पहला गाना आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं, संगीत है बिपिन बाबुल का।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना अब आपको सुनवाते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आह।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आज विश्व हृदय दिवस पर दिल शब्द के गाने आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आईना फिल्म का ये गाना, समीर के बोल, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत।

शकील बदायूनी का लिखा और सी रामचंद्र का संगीतबद्ध किया। ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म का नाम जिंदगी और मौत।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अमरदीप फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया श्री रामचंद्र ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: वाह वाह प्रभात वाह, बहुत बड़ी तालियां उनके लिए।
1: आकाश दीप फिल्म का गाना लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है चित्रगुप्त का।

शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया ये गाना आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में, फिल्म का नाम आन।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आंधी और तूफान इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फारूक कैसर के बोल, संगीत है रॉबिन बनर्जी का।

मुकेश की आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, अनिल बिस्वास का संगीत, फिल्म का नाम आराम।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए अलबेला फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और इसकी धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवाते हैं तलत महमूद की आवाज में आरजू फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई अनिल बिस्वास ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आस का पंछी। इस फिल्म से सुबीर सेन की आवाज, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

अभी तक हमारे श्रोता सुन रही थी विविध भारती की मुंबई केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम यादों की महफिल। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बजा है, आइए अब हम आपको अपनी अब से लेकर रात तक की प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। तो श्रोताओं, अब से बस थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम विवरण के बाद 1:05 पर आप प्रादेशिक हिंदी समाचार सुनेंगे, जिसके फौरन बाद 1:10 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम आपके लिए आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, प्रादेशिक हिंदी समाचार 6:10 पर और प्रादेशिक पंजाबी

हमारे केंद्र से फिल्म संगीत सुन सकते हैं आप दोपहर 1:15 पर। कुछ और फिल्मी गीत सुनवाएंगे आपको अपने यहाँ से शाम 5:05 पर। फिल्म संगीत का सुरीला सफ़र कार्यक्रम हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से आप सुना करते हैं दोपहर 1:30 पर, और फिर वहीं से दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होता है त्रिवेणी। श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे, पहले दोपहर 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर और फिर रात 11 बजे भी।

विविध भारती के मुंबई केंद्र से सदाबहार नगमे सुनेंगे दोपहर 2:30 पर, सखी सहेली कार्यक्रम होगा दोपहर 3:00, वहीं से शाम 4:00 पिटारा कार्यक्रम होता है। आज इस कार्यक्रम में सेलुलाइट के सितारे सिलसिले के तहत आप भेंट कर पाएंगे लेखक और अभिनेता शालिब हाशिम के साथ। हमारे केंद्र से शाम 5:30 पर आपके लिए हम प्रसारित करेंगे NCERT का कार्यक्रम उमंग। अमृत बानी सुनेंगे शाम 6:30 पर। मुंबई केंद्र से सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला हम रिले करेंगे शाम 7:00। श्रोताओं, फिर हमारे यहाँ से प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे शाम 7:45 पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार आप रात 10:30 पर भी सुन सकते हैं। कुछ पंजाबी गीत सुनिएगा शाम 7:47 पर। श्रोताओं, पंजाबी गीतों का हमारा कार्यक्रम होता है सुर सांझ, ये आप सुन सकते हैं रात 10:32 पर। रात 8:00 हवा महल कार्यक्रम होता है जो हम मुंबई केंद्र से रिले किया करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे एक झलकी, प्रश्न तो यही है। कुछ नए फिल्मी गीत सुन सकते हैं आप चित्रलोक कार्यक्रम में रात 8:15 पर। आपके लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा मुंबई केंद्र से रात 9:00। 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार, और आज के फनकार हैं अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक महमूद। रात 10:00 उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुना करते हैं आप छायागी। आज के कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करेंगी ममता सिंह। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

श्रोताओ, 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार। इसके बाद प्रादेशिक पंजाबी समाचार आप सुनेंगे, जो हम जालंधर केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान प्रावधान योजना लागू की है। राज्य सरकार फल, सब्जी, फूल, मसाले और खुशबूदार पौधों की खेती करने पर अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत नए बाग लगाने पर किसानों को 24,500 रुपये से 1,40,000 रुपये प्रति एकड़ तक का अनुदान दिया जाएगा, जबकि सब्जियों की खेती के लिए सामान्य वर्ग को 15,000 रुपये प्रति एकड़ तथा अनुसूचित वर्ग को 25,500 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार मसालों की खेती पर 15,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति एकड़, फूलों की खेती पर 8,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति एकड़ और खुशबूदार पौधों की खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अनुदान की पूरी राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर और हॉटनेट पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक निकाली जा रही सेवा यात्रा का पलवल पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने डॉ भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में आज इस यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर सफाई अभियान भी चलाया गया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। सेवा संकल्प अभियान को लेकर श्री गुर्जर ने कहा कि जनसेवा के कार्यों के प्रति मोदी सरकार हमेशा समर्पित रही है।
1: सेवा संकल्प में ब्लड डोनेशन कैंप है, स्वच्छता अभियान है, वृक्षारोपण है, हेल्थ चेकअप कैंप है, ये तमाम जो सेवा के काम है वो सब चल रहे हैं। दिव्यांगों को निःशुल्क यंत्रण उपकरण बांटने के कार्यक्रम चल रहे हैं। तमाम काम इस पूरे महीने चलेंगे। सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का संकल्प है।
0: मीडिया से बातचीत में कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर श्री गुर्जर ने कहा,
1: बंगाल में हारते हैं तो वोट चोरी, केरल में जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं है। बिहार उत्तर प्रदेश में 2003 से 2000 से लगातार इनकी 4-6 सीटें आ रही है। तब तो बीजेपी नहीं थी, तो वोट चोरी किसने कर लिया? तमिलनाडु में 1967 से कांग्रेस हार रही है, तो वहां का वोट चोरी किसने कर लिया? मतलब तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुआ। आप पार्टी पंजाब में जीत गई तो वोट चोरी नहीं है। ये हारते हैं तो वोट चोरी है। चुनाव आयोग खराब है, वोटर लिस्ट खराब है, ईवीएम खराब है।
0: हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी एसआईआर को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि एसआईआर से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। पलवल में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ अर्चना गुप्ता ने कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ बदलावों का भी ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने ही एसआईआर का प्रावधान किया था। एसआईआर के जरिए वोटर सूची से मृत लोगों एवं डुप्लीकेट वोटों को हटाने तथा वोटर सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शामिल थी। भाजपा की सरकार जब सत्ता में आई तो कांग्रेस ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब वायनाड, केरल में चुनाव होता है तो वहां पर भी ईवीएम मशीन से चुनाव संपन्न होता है। ऐसे में राहुल गांधी को भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाने की बजाय सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। सेवा संकल्प अभियान के तहत कल पिंजौर के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध करवा रहे लाभों की जानकारी दी। शिविर में मात्र 200 लाभार्थियों का सेवा सेतु पोर्टल पर पंजीकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त भारत अभियान को धरातल पर सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन को जन केंद्रित पहल शुरू की है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं गुरविंदर सिंह सहोता तो प्रादेशिक खबरां सुनो। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ईडी वल्लों मोहाली दे सैक्टर 119 स्थित TDI इंफ्रा

आपने इस फिल्म का गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं पड़ोसन फिल्म से गीत, आवाज मन्ना डे की है।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए सुनते हैं आओ प्यार करें फिल्म का गीत, उषा मंगेशकर और मन्ना डे ने इसे गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे।

0: झटका झटका
1: दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर गूं दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर गूं दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार

0: आप सुन रही थी फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको महमूद पर फिल्माए गए गीत सुनवाए। आइए अब एक संदेश सुन लेते हैं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफर, जो हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

स्वच्छता अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। जहां स्वच्छता का वास होता है, वहीं पर खुशियों का निवास भी होता है।

स्वच्छ गली स्वच्छ मोहल्ला, यही है स्वस्थ जीवन का रास्ता। स्वच्छता से नाता जोड़ें और गंदगी से रिश्ता तोड़ें। याद रखें, स्वच्छता जिम्मेदारी है, हर नागरिक की भागीदारी है।

0: स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलके करें अपना योगदान।
1: गुमनाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जो बिल्कुल हंसते नहीं, ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हमारे परिवार में हम सब हंसते हंसाते रहते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि परिवार में है तो मैं रिश्ते की बात नहीं करूंगी, शायद रेडियो पर सुन ले तो संबंध खराब हो जाएगा, पर 40-42 सालों से मैंने कभी उन्हें ठहाके लगाकर हंसते हुए नहीं सुना। अगर वो कभी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो सोचती हूँ कि आज निश्चित कुछ अजीब होने वाला है। परिवार के लोग उनके इस एटीट्यूड से वाकिफ है और पीछे से जो है उनके बारे में ये बात भी होती है। तो आज कुछ अच्छी बात हो तो 1-1.5 इंच वो मुस्कराएंगे ज़रूर। एक साथी ये लिख रहे हैं कि अक्सर बहुत से कॉमेडियन की असली जीवन जो है वो बहुत तनावपूर्ण रहता है, दूसरों को हंसाकर खुद अंदर से वो दुखी रह होते हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गुजराती मुहावरा है कि हंसे तेनू घर वसे, मतलब जो सदा हंसता मुस्कुराता रहता है उसका घर आसानी से बस जाता है। वैसे अच्छी तंदुरुस्ती यानी सेहत के लिए हंसना मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो अपने मित्र सगे संबंधी हो या कोई और हो। एक साथी ने ये बात लिखी कि महमूद अपने पूरे शरीर से अभिनय करते थे। एक समय ऐसा था कि वे पर्दे पर आते और हंसी का जो दौर दर्शकों के मन में चलता वो ख़त्म ही ना होता। एक ज़माना तो ऐसा था महमूद अकेले अपने दम पर पर्दे तक दर्शकों को खींच कर ले आते थे। वैसे तो फिल्मी दुनिया के पिटारे में अनेक हास्य कलाकार आए और गए, मगर महमूद एक रत्न थे। वे उस अनमोल मोती की तरह थे जो हर फिल्म निर्माता अपनी अंगुली में पहनना चाहता था। ऐसे रत्न सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आरती फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी की बोल, रोशन का संगीत। एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बात बात पर ठहाके लगाकर हंसते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है? कोई ऐसे व्यक्ति जो चाहे कितनी भी हंसी की बात हो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते? चलिए गीत सुनिए।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: किसी की नाकामियों पर, शारीरिक दुर्बलता पर मजाक उड़ाते हुए मत हंसी। ऐसी हंसी किस काम की? जी हाँ, किसी के ऊपर हंसने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी की कमियों पर हंसें। हंसें हंसने वाली बातों पर हंसें, या अपनी ही किसी गलती पर हंसें, या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य जब हम स्वयं कर लेते हैं तो हमें अपने आप पर हंसी आ जाती। हम उस हंसी की बात कर रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने का हंसने के अलावा एक और बहुत ही दिल के लिए लाभदायक बात है, वो है अपने हृदय में कोई भी बात दबाना नहीं चाहिए, कह डालना चाहिए। हृदय हल्का भी होगा और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। साथ में विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम का आनंद भी हम ले सकते हैं। और एक साथी की ये बात है कि खुशी से खिला हुआ चेहरा सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल, दिमाग और शरीर का हर अंग खिल जाता है। पता नहीं हम हंसने में भी कंजूसी क्यों कर देते हैं। पहले हम खुद मुस्कुराएं, तभी तो हम दूसरों के होठों पर मुस्कान ला पाएंगे। एक साथी ये लिख रहे हैं कि एक वाक्य याद आ गया जो विविध भारती पर किसी प्रोग्राम में सुना था कि महमूद साहब के घर पर कोई पार्टी हो रही थी जिसमें जूनियर महमूद साहब को नहीं बुलाया। उन्हें पार्टी में जूनियर महमूद साहब बिना बुलाए पहुँच गए, वैसी टी शर्ट और ड्रेस पहन कर जैसी महमूद साहब ने पहन रखी थी। इस गीत में हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, इस गीत में जो पहन रखी और ये गीत गाने लगे, बस फिर क्या था, महमूद साहब ने जूनियर महमूद को अपने गले से लगा लिया। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि हंसना केवल होठों का व्यापार नहीं, आत्मा की औषधि है। जो व्यक्ति हंसना जानता है वो दुखों में भी रास्ता निकाल लेता है, और जो हंसाना जानता है वो दूसरों के जीवन में दिया जला देता है। तनाव, बीमारी, अकेलेपन से भरी इस भागदौड़ भरे जीवन में एक सच्ची हंसी दिल हल्का कर देती है और रिश्तों में जमी धूल को साफ कर देती है। हंसने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता और हंसाने वाला व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता। इसलिए हंसिए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे, और हंसाइए ताकि आपका होना दूसरों के लिए उत्साह

बन जाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बचपन में जब छोटे थे तो कक्षा 8वीं में था तो मेरे क्लास टीचर बहुत ही अच्छे थे। उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही दिखाई देती थी, चाहे वो हमें मारते भी थे लेकिन उस मार के पीछे भी एक हंसी छुपी रहती थी। और हमारे प्राचार्य थे, उनको कभी भी हमने हंसते हुए नहीं देखा था। तो ये बातें हमारे साथियों की है और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब एक ऐसा गीत हम सुनने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी भी बार ये गीत सुनो चेहरे पर हंसी आए बिना नहीं रहती। सुनिए ये गाना।

आज लगाई चोट कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्त तंगिर दक्षिण गिर तक तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्त तंगिर दक्षिण गिर तक तज्जरी तदन तज्जनु तदन तज्जनु तदिनि तज्जनु तत्त तरित दनत।

पड़ोसन फिल्म का ये गाना अभी हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि हृदय प्रसन्न कर दिया आपने चतुरनार, ये गाना सुनवा के जो कि पड़ोसन फिल्म से हमने सुना। और एक साथी लिख रहे हैं कि मैं तो हंसता हूँ अपने हालातों पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि हंसने वाले लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, एक पड़ोसी थे जो किसी को हंसते हंसाते या बच्चों को खेलते हुए देख करके बहुत भड़क जाते थे। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मेरे जो पति हैं बहुत कम ठहाका लगाकर हंसते हैं, बहुत सीरियस वो रहते हैं। और एक ये भी लिखा है साथी ने कि पड़ोस में बहुत पहले एक परिवार आया था, उसमें उनकी जो श्रीमती जी बहुत हंसमुख थी और जब भी मिलती थी तो ऐसा लगता था कि वो अभी हंस देंगी या जो है एक स्माइल एक दे देंगी, इस तरह की बात इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हंसना हंसाना एक कला है, किसी किसी को ये इसमें महारत हासिल होती है। कई कलाकार हैं जो दूसरों को आसानी से हंसा देते हैं, महमूद जी भी उनमें से एक हैं जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसमें शरीर में उत्पन्न तनाव को वो दूर करता है, आंतरिक खुशी मिलती है। और कुछ गानों का जिक्र उन्होंने किया है। चलिए अगला गाना बेटी बेटे इस फिल्म से।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: श्रोताओं, आपका ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है विविध भारती से, बस ये मोहब्बत हमारे दिल में घर कर जाती है, दिल तक पहुंचती है कि चाहे हालात कुछ भी हो, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम किसी तरह विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकें। धन्यवाद आपका इस प्रयास के लिए। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि मेरा ये जो अभी गाना हमने सुना ना पड़ोसन फिल्म का, एक चतुर नार बड़ी होशियार, इस गाने के बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरा खुद का नाम चतुर है और इस गाने में गाने की वजह से मेरे दोस्त जो है वो हमेशा ये हम फरमाइश करते थे कि चतुर नार करके सिंगार ये गाना आप गुनगुना कर सुनाइए, और मैं उन्हें गुनगुना कर सुनाता हूँ, गाकर सुनाता हूँ और मन ही मन बहुत खुश भी होता हूँ। चलिए, आपकी खुशी हमारे लिए बहुत अनमोल है। और अब हम आपको दो फूल इस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आशा भोसले और महमूद की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत RD बर्मन का।

0: एक साथी की ये बात है कि हृदय के स्पंदन को हृदयंगम कर हृदय हेतु हंसिए और हंसाइए। हृदय की अदला बदली सिर्फ प्रेम और साहित्य में होती है, भौतिकी नहीं। विश्व हृदय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिल आपके पास ही रहेगा, कोई और नहीं ले सकता, अतः उसकी सुरक्षा संरक्षण आपके ही हाथों में है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अपने दिल का ख्याल रखना, अपने दिलों को जोड़ना, इसका ध्यान रखिए। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, कुंवारा बाप इस फिल्म का गाना।
1: Oh, yeah.

हंसते हंसाते रहिए और अपने हृदय के अपने दिल के सेहत का ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। एक खूबसूरत सा शब्द है हृदय। छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें हमारी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी है। दिल खुश होता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, दिल उदास होता है तो आंखें नम हो जाती हैं। किसी अपने की एक छोटी सी बात भी दिल को छू जाती है। लेकिन यह दिल केवल भावनाओं का केंद्र नहीं है। हमारे शरीर में मौजूद हृदय हर पल हर क्षण हमारे लिए काम करता है, हम जाग रहे हों या सो रहे हों।

खुश हों या परेशान, दिल अपनी धड़कनों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। इसी अनमोल दिल की सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो आज बातें उसी दिल की, जो कभी किसी की खूबसूरती देखता है, कभी किसी के प्यार में धड़कता है और कभी किसी की याद में टूट जाता है। और जब बात दिल की हो तो चेहरे से ज्यादा दिल को देखना ही शायद सबसे जरूरी है। दिल को

0: चेहरा झूठा।
1: चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल की अच्छाई लंबे समय तक याद रहती है। कुछ ऐसा ही हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। हम बाहर से अपने आप को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त देखते हैं, लेकिन अंदर हमारा दिल किस हालत में है, इसका पता लगाना भी उतना ही जरूरी है। आज की जीवन शैली में हर काम की भागदौड़ में अपने खाने पीने, नींद, व्यायाम और मानसिक सुकून को अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। तनाव को सामान्य मान लेते हैं और शरीर के संकेतों को टालते रहते हैं। दिल की देखभाल के लिए बहुत बड़े बदलाव हमेशा जरूरी नहीं होते। रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी शारीरिक सक्रियता, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव को कम करने की कोशिश और अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात, दिल का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी है। कभी कभी हम मन में इतनी सारी बातें दबा लेते हैं जैसे दिल के अंदर भी एक गिरह पड़ जाती है। किसी से बात कर लेना, अपनी मन की बात कह देना, थोड़ा गुनगुना लेना, मुस्कुरा लेना, मन शायद ऐसी ही कितनी गिरह

कितनी खूबसूरत बात है, दिल की गिरह खोलने के लिए एक गीत भी काफी हो सकता है। संगीत हमारे मन के बहुत करीब होता है, कभी खुशी में साथ देता है, कभी अकेलेपन में साथी बन जाता है, और कभी हमारे उन एहसासों को आवाज देता है जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह पाते। और दिल की बात हो तो रिश्तों का जिक्र भी होना ही है, क्योंकि किसी का प्यार दिल को सुकून देता है तो किसी की बेरुखी वही दिल तोड़ भी देती है। दिल टूटने का दर्द शायद हर इंसान ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, लेकिन जिंदगी की खूबसूरती यही है कि दिल टूटने के बाद भी धड़कता रहता है और हमें फिर से जीना सिखाता है। इसलिए अपने दिल को सिर्फ दुखों की यादों में मत भरिए। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी चीजें चुनते हैं, उसी तरह मन के लिए भी प्यार, दोस्ती, हंसी और सकारात्मकता चुनिए। और अगर कभी कोई दिल तोड़ भी दे तो उस टूटे हुए दिल को हमें संभालना भी सीखना होगा, क्योंकि जिंदगी किसी एक रिश्ते या दुख पर नहीं रुकती।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर है।

0: अमरीका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमांड के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय कालेखां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा, फ्लाईओवर तथा लूनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

0: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है, जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है, जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सर। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है। महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

0: मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूँ कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रुपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
2: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
0: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
3: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना आंचल फिल्म से है। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें, प्रदीप का लिखा हुआ गाना, श्री रामचंद्र का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना है अनार बाला। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और सुबीर सेन की आवाजें, आरसी पंड्या का लिखा हुआ गाना, बुलो सिरानी का संगीत।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब सुनते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, कैफिया आजमी के बोल हैं, संगीत है SD बर्मन का।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, इकबाल कुरैशी का संगीतबद्ध किया ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम बिंदिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं कमर जलाल आबादी का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम छलिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में छलिया फिल्म का ये गाना आपने सुना और अब सदाबहार नगरी में कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बंबई का बाबू। इस फिल्म का गाना

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: सहेली
2: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंजू द्विवेदी
3: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
2: बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर आपके साथ वक्त मिला है कुछ बातें करने का, कुछ विषयों पर चर्चा करने का। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि समय कितना गुजर जाता है जब हमारा मिलना वैसे तो होता है, लेकिन हाँ इस मंच की देखिए अलग ही बात होती है ना। तो हमारे साथी भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज तो भाई मंजू जी भी है और मंजरी भी है और ये लोग क्या दिल की बातें करते हैं ना।
3: बिल्कुल। और देखिए दिल की बातों की आपने बात की, तो जब भी मिलते जुलते हैं तो दिल की बातें करते हैं और कर ही लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: कहते हैं कि दिल की बातें कर लेने से मन जो है हल्का हो जाता है और हमें थोड़ा सुकून भी मिलता है कि हमारी सखी ने, हमारे साथी ने, हमारे दोस्त ने, हमारे मित्र ने हमारे दिल की बात सुन ली। हो सकता है वो कोई उस चीज का कोई सोल्यूशन दे सके, कोई उसका निर्णय निकल सके।
2: बिल्कुल।
3: और एक मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही साथ हृदय की जो या दिल की जो सेहत है वो भी दुरुस्त रहती है।
2: बिल्कुल दुरुस्त रहती है और बातों का कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाता है।
3: सही बात है।
2: और
3: आज के विषयों की बात कर ले हम सबसे पहले।
2: देखिए हमने तो बातों में आपने दिल की बात करी, उसमें अभी विषय आपने निकाल दिया, तो मैंने कहा भाई मिलते रहेंगे बातें करते रहेंगे दिल से तो कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाएगा।
3: तो तुमने भी विषय की बात
2: कर दी मुहावरों की दुनिया में, है ना।
3: बिल्कुल। तो आज का हमारे जो विषयों में सबसे पहला विषय होगा स्वस्थ दिल लंबा जीवन। चूंकि आज विश्व हृदय दिवस है तो हम दिल की या हृदय की बात करेंगे। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे महिला उद्यमी अदिति बलबीर की।
2: जी। और इसके साथ हल्की फुल्की बातें में होगा कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाने दे। यानी ये जो सारी चीजें है ना आज कि दिल की बात है, फिर अन्न की बात है और राई के पहाड़ बनाने की बात है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। क्योंकि दिल से हम अगर खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे तो हम पूरा ठीक से खाएंगे, और दिल से नहीं खाएंगे तो हम थोड़ा थाली में छोड़ देंगे, है ना।
3: बिल्कुल
2: जी। तो इस तरह की बात
3: अन्न को व्यर्थ ना होने दे, जितना जरूरत हो उतना ही बनाए, और अगर बच जाए और किसी तरह आप अगले दिन उसका उपयोग कर सके तो अच्छी बात है। या जैसे किसी समारोह में अगर बच जाता है तो आपको किस तरह से दूसरों को वो दे देना चाहिए ताकि उसका उपयोग हो सके, इस के अंतर्गत हम यही बातें जो है करने वाले हैं। इसके अलावा मुहावरों की दुनिया में जैसा तुमने बता ही दिया है कि राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके बता देना, जितनी बड़ी वो है भी नहीं बात।
2: बिल्कुल। तो, और मंजू जी राई को अगर हम चाहें भी कि एक पहाड़ की जैसे खड़े करने की सोचे, कल्पना भी करें, तो राई रुकेगी नहीं, वो भरभरा के गिरी जाएगी।
3: तो इसी तरह से जब छोटी सी बात को कोई बहुत बड़ा बना देता है तो जैसे राई भरभरा के गिर जाती है, उसी तरह वो बातें भी कभी न कभी सामने आकर के गिर जाती है।
2: बिल्कुल सही।
3: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो स्वस्थ दिल लंबा जीवन, दिल की बातें हम करते हैं तो दिल हमारे शरीर का इंजन है, और जब इंजन सही चलेगा तभी जिंदगी की गाड़ी लंबी और सुहानी चलेगी। तो प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं ताकि हम सब इसकी अपनी इस धड़कन की कद्र करना सीखें।
2: बिल्कुल। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, खराब खान पान और लगातार बढ़ते तनाव का जो सबसे बड़ा असर होता है वो हमारे दिल पर ही पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है मंजू जी कि अपने दिल को मजबूत और सेहतमंद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजमर्रा की जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने दिल को भी संभाल सकते हैं।
3: बिल्कुल। और दिल को सेहतमंद रखने के कई सारे ऐसे तरीके हैं जो आसान भी हैं और कारगर भी है। इस बारे में हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें हमें लिख करके भेजी है, तो उन आसान तरीकों के बारे में हम बताएंगे और श्रोताओं के कमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल को सही रखने का एक और तरीका है, संगीत। कितना दिल को है ना खुशी से भर देता है, मन को खुशी से भर देता है, उससे भी तो हमारी सेहत अच्छी होती है।
2: बिल्कुल, आपका इशारा हम समझ गए।
3: चलिए सुनते गाना।

0: मंजरी ये गाना हमने सुना, दिल मेरा बस में नहीं, लेकिन दिल को बस में रखना पड़ता है,
1: बिल्कुल रखना
0: कई बार, हालांकि हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, नहीं रख पाते हैं, लेकिन दिल को बस में रखना या वश में रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, वो भी एक कला है मंजू जी, कि हम अपने हर परिस्थिति में, चाहे वो खुशी के दिन हो, चाहे गम के दिन हो, दुखी वाले दिन हो, हर समय हमें अपने दिल को बहुत मजबूती से रखना पड़ता है, कि तभी हम सामने जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, चाहे खुशियों के दिन, उनका सामना हम कर पाते हैं। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। स्वस्थ दिल हो तो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और खुशियों की रौनक बनी रहती है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अतः संतुलित भोजन, नियमित हल्की फुल्की कसरत, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना, ये छोटी छोटी आदतें दिल को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन दिल की सेहत के साथ मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। खुलकर हंसिए, अपनों के साथ समय बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और मन में प्यार व सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहता है तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती बल्कि वो अधिक सुंदर और खुशहाल बनती है। कितनी प्यारी बातें और सटीक बातें इन्होंने लिखी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे साथी ने छोटी सी बात लिखी है कि दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसिए, ऑपरेशन थिएटर में दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बहुत सीधी बात लिखी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो यही हमने कहा था ना कि जब हम सखियां मिलती है तो दिल की बात करती है, तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों मित्रों से
1: गागर में सागर भरने वाली बात है ना। और एक साथी और लिखते हैं कि कोई माने या ना

0: मैंने पहले कभी हृदय को बीमार होते हुए सुना था, कभी ब्लड प्रेशर की कोई बात सुनी थी, कभी शुगर की कोई बीमारी सुनी थी, कभी किडनी की कोई इतनी बीमारी सुनी थी। इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है, हजारों सवालों का एक जवाब, जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए मौसम का नियंत्रित वातावरण हो रहा है, अनियंत्रित वातावरण हो रहा है। ईश्वर ने तो हमें, ये प्रकृति ने तो हमें 4 महीने का हर मौसम दिया था, मगर हमने अपनी स्वार्थ और कायरता से उस मौसम को बिल्कुल बदल दिया। ना गर्मी आएगी तो 7-8 महीने गर्मी पड़ेगी, ठंड जाए 4 महीने पड़नी थी वहां 4-5 दिन में चली जाती, यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है कि समस्याएं होती जा रही है इंसान की जिंदगी में, चाहे वो भागा दौड़ी की हो कि कमाने धमाने की चिंता है या घर परिवार को पालने की चिंता है, तो और मौसम का भी उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें अब जल्दी ज्यादा सुनाई देने पड़ गई कि तनाव की वजह से हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की बीमारियां सुनाई देने लग गई हैं।
1: हाँ, इन्होंने ये लिखा कि पहले के जमाने में इन बीमारियों के बारे में हमने सुना ही नहीं था, लेकिन अब ये बहुत आम हो चुकी है। हाँ, ये तो सही बात है कि मौसम का बहुत असर हुआ है, हमारे खान पान का असर हुआ है, हमारी दिनचर्या का भी बहुत असर हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग तो बहुत देर तक सोते नहीं है और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, जल्दी उठते नहीं है, और खान पान का असर तो हुआ ही है। जंक फूड खाते हैं हम, मसालेदार और तेज मिर्च वाले, और इसके अलावा तेल बहुत होता है उनमें, बहुत सारा बटर चीज वगैरह डाल करके इस तरह की चीजें जब हम खाते हैं तो इसका दिल पर असर तो होता ही है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है ताकि हमारा दिल जो है वो स्वस्थ रहे। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल और लंबा जीवन पाने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना सबसे जरूरी है। स्वस्थ दिल और दीर्घायु के लिए मुख्य उपाय जो है वो भी इन्होंने लिखे हैं कि नियमित व्यायाम करें, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता से व्यायाम करें, और उन व्यायाम में आप जो है तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना ये आप कर सकते हैं। संतुलित आहार, अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, ये शामिल कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, योग, ध्यान और मेडिटेशन से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं, और धूम्रपान और शराब से दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, रोज 7 से 9 घंटे की नींद लें, नियमित जांच कराएं, जैसे अगर रक्तचाप जैसी कोई बीमारी है या शुगर है या नहीं है, उसके कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो भी आप जो है जांच करवा सकते हैं, और इस तरह से जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हंसी और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसीलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लॉफ्टर क्लब की जरूरत पड़े, और उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लिया कीजिए, यानी कि अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल रखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं, और आपका दिल और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे।
1: बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम की सेहत के लिए भी कुछ बातें बहुत जरूरी हो जाती है मंजरी, और इसमें एक बात है कि हमको समय समय पर छोटा सा एक ब्रेक लेना होता है। तो कार्यक्रम में इस वक्त समय हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, देखिए हम फिर से हाजिर हैं और हम दिल की बातें कर रहे थे, तो एक साथी ने बहुत दिल से ये बात लिखी कि दिल एक ऐसा इंजन है जो बिना किसी ब्रेक के जिंदगी भर लगातार चलता रहता है। हमने अभी कार्यक्रम में ब्रेक लिया है, लेकिन दिल की बात जब आती है तो वहाँ ब्रेक का कोई काम ही नहीं होता है। जब तक ये धड़कता है तब तक सांसें चलती है और जीवन मुस्कुराता है। इसलिए कहा भी जाता है, रखेंगे जब दिल का ख्याल तभी जीवन बनेगा खुशहाल। एक मजबूत और सेहतमंद दिल सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता नहीं है, बल्कि हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। दिल स्वस्थ होगा तभी जीवन का हर पल लंबा, ऊर्जावान और खुशनुमा बना रहेगा।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि आजकल के व्यस्त रहन सहन के तौर तरीकों के कारण, खान पान, नींद में कमी के कारण बहुत से असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं, जिनमें डायबिटीज और हृदय रोग मुख्य। इसके साथ ही एक साथी और लिखते हैं कि विश्व हृदय दिवस की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं।

0: सालों साल तक दिल स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से ताजा, संतुलित और पौधों पर आधारित आहार लेना चाहिए। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के खान पान और के सुझावों के अनुसार उनकी थाली में हर चीजों को शामिल करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। आप सादा भोजन करें और खूब सारा पानी पिए और हरी सब्जियां फल वगैरह खाएं तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहें।
1: कुल मिलाकर हम वर्षों से जो परंपरा तौर तरीके जो हम अपना रहे हैं या खान पान जो अपना रहे हैं, बस उन्हीं को अगर हम अपनाते चलेंगे और समय से सोना, समय से उठना, थोड़ा व्यायाम करना, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्वस्थ रहा जा सकता है।
0: और हमारी मंजू जी बहुत ध्यान रखती हैं।
1: देखिए, रखना तो जरूरी है ही, क्योंकि हमें शरीर के साथ साथ अपनी आवाज का भी ख्याल रखना पड़ता है और सेहत दुरुस्त रहेगी तभी तो हम अपने काम को समय से आ पाएंगे और जा पाएंगे।
0: आपको से ही तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं देखा जाए तो।
1: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम और धूम्रपान जैसी आदतों से बचाव करना चाहिए। इसी तरह की बात हमारे एक साथी ने पहले भी लिखी है तो जो हमने आपको पढ़ के सुनाई है। एक साथी और लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल लंबा जीवन का आधार है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और व्यायाम करें। और इसी तरह की और भी बातें हमारे साथियों ने लिखी है।
0: एक लिखते हैं कि मंजू जी, कि मुस्कान और ठहाकों का सफर ही जिंदगी को खुशनुमा बनाता है, क्योंकि बिना हंसी के इंसान का दिल एक उदास और बंजर जमीन की तरह हो जाता है। किसी के चेहरे पर खुशी लाना एक जादुई हुनर है जो हर किसी के पास नहीं होता। जो लोग दिल के अमीर होते हैं वे दौलत और पैसों से नहीं बल्कि किसी मासूमियत, उसकी तिरछी चितवन और दिलकश अदाओं से ही अपना सब कुछ हार बैठते हैं। जब कोई अपनी ही धुन में मगन होकर अजीबोगरीब हरकतें करता है तो महफिल में अपने आप हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते जब ऑटो रिक्शा या ट्रकों के पीछे लिखे वो मजेदार और तीखे डायलॉग्स नजर आते हैं तो इंसान चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। बिल्कुल वो दृश्य उभर आया जब जाते हैं लंबे सफर पर तो दिखता
1: एक
0: है।
1: हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल दुरुस्त तो जिंदगी दुरुस्त, एक स्वस्थ हृदय लंबा और स्वस्थ जीवन बिताने में हमारा सहायक होता है। आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं। और एक और साथी लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन योग प्राणायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, संतुलित आहार लें, सकारात्मक सोच रखें। तो आप सभी का धन्यवाद और अब हम एक गीत सुनते हैं।

0: गीत हमने सुन लिया मंजरी, और अब हम बात करेंगे, एक हमारी सखी की बात करेंगे जिन्होंने क्या किया है और किस तरह से उन्होंने जो है दुनिया को राह दिखाई है उसके बारे में बात करेंगे, अदिति बलबीर की बात करेंगे। हम कुछ अपनी तरफ से बात बोले उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ बात लिखी है, तो पहले वही पढ़ के हम सुना देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है अदिति बलबीर पर, जो कि रिसोर्ट्स के सीईओ और फाउंडर है। उनकी गिनती आज भारत की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में होती है।
1: बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। और एक ने लिखा है कि बचपन से ही अदिति को घूमने का शौक था। अदिति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की एक पूर्व छात्र हैं। उन्हें बचपन से घूमने फिरने से प्यार था, जिसको उन्होंने अपने लिए करियर में बदल लिया, जिसके बाद उन्होंने वी रिसोर्ट की शुरुआत की। अदिति 2014 में वी रिसोर्ट की सीईओ बनी। 5 साल से कम समय के भीतर ही अदिति ने भारत के 21 राज्यों में 120 से ज्यादा रिसॉर्ट्स के लिए कंपनी के विस्तार का नेतृत्व किया। ये रिसॉर्ट्स ऑफ बीच यात्रा श्रेणी में अपनी तरह का पहला ब्रांडेड रिसॉर्ट बन गया है। बहुत अच्छी सी जानकारी भेजी हमारे साथियों ने।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि हमने कहा कि अदिति बलबीर जो है वो भारत की एक प्रमुख महिला उद्यमी और वी रिसॉर्ट्स की संस्थापक है, और उन्होंने भारत में ऑफ बीट और इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। अदिति बलबीर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में PGDM यानी कि MBA की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से उच्च प्रबंधन शिक्षा प्राप्त की है।
1: अदिति ने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से की। उन्होंने बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स और बेडरॉक वेंचर्स जैसी प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर्स कैपिटल फर्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रबंधन किया, जिससे उन्हें इस उद्योग की बारीकियों, बाजार की कमियों और अवसरों की गहरी समझ मिली।
0: बिल्कुल, और वी रिसोर्ट्स की जो नींव है वो कैसे पड़ी इस बारे में भी हम आपको बता दें। प्राइवेट इक्विटी के काम करते समय अदिति ने देखा कि भारत में कई खूबसूरत और ऑफबीट यानी कि कम लोकप्रिय या प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं जहां छोटे बुटिक रिसॉर्ट्स मौजूद हैं। हालांकि ये रिसॉर्ट्स असंगठित थे, इनके पास न तो उचित ब्रांडिंग थी और न ही मार्केटिंग और पहुंच और न ही पेशेवर प्रबंधन। इसी अंतर को खत्म करने के लिए 2014 में उन्होंने वी रिसॉर्ट्स की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसा एसेट लाइट मॉडल तैयार किया जिसके तहत स्वतंत्र रिसॉर्ट मालिकों के साथ साझेदारी करके उन रिसॉर्ट्स का माननीकरण और प्रबंधन वीर रिसॉर्ट्स के बैनर तले किया जाने लगा।
1: बिल्कुल, और माइक्रो और ऑफ बीट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच अद्वितीय और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है, और मानकीकरण दूर दराज के इलाकों में स्थित रिसॉर्ट्स में भी मेहमानों को उच्च गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा और पेशेवर सेवाएं देना उनका एक मुख्य उद्देश्य है। और स्थानीय रोजगार और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने रिसॉर्ट में 90% से अधिक कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों को नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षित करना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, यानी कि उन्होंने आसपास के लोगों को ही इसमें आगे बढ़ाया।
0: हाँ, ताकि लोकल लोग जो है वहाँ के वो एक तो होता यह है कि उनको काम मिलता है, रोजगार मिलता है। दूसरा, जो वहाँ के लोग होते हैं उनको उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। दूसरा, जब उनका घर वहीं है तो वहाँ उन्हें काम करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है। वो अपने घर परिवार के साथ रहते हुए रोजगार भी मिल जाता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और सतत पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुँचाना, ये भी इस चीज का एक उद्देश्य रहा है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। तो पर्यटन और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अदिति बलबीर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, ये अवार्ड उन्हें मिला है। दूसरा है द इकोनॉमिक टाइम्स, इनकी तरफ से वुमेन अहेड ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा CNBC TV18 यंग टर्क्स, इनकी तरफ से भारत की उभरती हुई दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रदर्शित ये अवार्ड इन्हें दिया गया। डेल विमेंस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की तरफ से वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनिंदा महिला उद्यमियों में उन्हें शामिल किया गया। और वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप उत्कृष्ट महिला उद्यमी और

0: हॉस्पिटैलिटी लीडरशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: इतना सारे उन्हें पुरस्कार मिले, ये सब उनकी मेहनत का ही और सोच का नतीजा है, जो जब उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया कि हमें इस तरह के सुविधाएं देनी चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, तो उनके काम की तारीफ हुई और ये जो चीजें उन्हें मिली है सम्मान पुरस्कार वो उसका ही एक परिणाम है। तो ऐसी सोच सबकी अगर हो, अपने ही आसपास के चीजों को हम अच्छा करने के लिए सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम सभी।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम बड़ी बड़ी चीजों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा काम है जिसका नाम है, हमें लगता है कि जब हम वहां काम करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी
1: जी।
0: या फिर वहीं जाकर के हम पैसा कमा सकते हैं या अच्छा जीवन तो एक वहीं पर बिताया जा सकता है। लेकिन अगर हम आसपास नजर डालें या जो पढ़ाई हमने की है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, अगर उन क्षेत्रों की तरफ हम ध्यान दें और हमारी पढ़ाई का उपयोग उन चीजों को बढ़ावा देने में अगर हम करें, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें ये कोई शर्म की बात नहीं है या ये कोई कमतरता आंकने की भी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ ये छोटा सा काम करेंगे तो अरे हमको कौन पूछेगा, या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या पैसा हम कैसे कमा पाएंगे, या घर कैसे चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ नजर डालें, और कई बार क्या होता है जिससे कई महिलाओं को या पुरुषों को जिनको भी बहुत किसी क्षेत्र में रुचि होती है, जैसे किसी महिला की बात करें, उसे कशीदाकारी बहुत पसंद है या उन्हें भोजन बनाना बहुत पसंद है,
1: किसी को अचार पापड़ इन सब का भी शौक होता है, तो भाई आप अपनी ही उस कला को आगे जाने दीजिए।
0: हाँ, तो ये बहुत सुनने में शायद हो सकता है या कहने में बहुत छोटी बात ये लगती हो, लेकिन अगर कोई महिला कोई व्यक्ति इस चीज को ठान ले कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है और थोड़ा सा उस क्षेत्र में कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे हम अदिति की बात कर रहे थे, ऐसा अगर इन्होंने नहीं सोचा होता तो क्या ये काम ये कर पाती, इन्हें पुरस्कार मिल पाती या आगे बढ़ पाती? तो ऐसा हम सब सोच सकते हैं और सब कर सकते हैं। और अब हम ये सोच रहे हैं कि कार्यक्रम में एक ब्रेक ले लें।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कॉन्स और हवन सामग्री।

0: तो मंजी, गीत हमने सुन लिया और अब कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत ज़रूरी होती है कि जब हम अच्छी सारी हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है. और लेकिन जब बात हो भाई अन्न के दाने की, तो अन्न का नाम सुनते मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब उसकी कोई कद्र नहीं करता है तब मन दुखी होता है ना.
0: बातें हल्की फुल्की है लेकिन ये जो विषय है ये बड़ा भारी है.
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अन्न से हमारा वास्ता रोज पड़ता है. अन्न के बिना तो हम रह ही नहीं सकते. कोई दिन ऐसा नहीं जब हम अन्न के बिना रहते हों. कुछ तो हम खाते ही हैं, पीते ही हैं. तो उसकी जो अहमियत है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है. अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार होता है. हमारे संस्कारों में भी अन्न को ईश्वर का रूप माना जाता है. और हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये मनाया जाता है. इसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है या उद्देश्य होता है वो ये याद दिलाना होता है कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाने दे.
1: बिल्कुल. और आज एक तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ खेतों से लेकर हमारी थालियों तक ढेरों खाना बर्बाद हो जाता है. जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उसे उगाने में लगी उस व्यक्ति की मेहनत यानी किसान की मेहनत, पानी, ईंधन और जमीन जैसे अनमोल संसाधन भी बर्बाद होते हैं. क्योंकि दिन रात अपने खेत को सींच कर बीज डालकर बोना, फसल को देखना पल पल बढ़ते हुए, फिर उसमें अन्न लगता हुआ, दाने लगते हुए देखना, उनकी जो कहते हैं बालियां लगती, गेहूं की बालियां लग रही हैं, तो देख के वो कितने हर्षित होते हैं. और जब या तो प्राकृतिक गड़बड़ी हो तो अलग बात है, लेकिन जब हमारे पास तक वो खाना आ रहा, अन्न आ रहा है और हम उसको कदर नहीं कर रहे हैं तो फिर मन खराब होता है कि नहीं एक गेहूं के दाने से हम कितना अन्न उपजा सकते हैं.
0: बिल्कुल, किसान की मेहनत तो अपनी जगह है ही मंजरी, लेकिन उसके बाद हम भी तो उसे बाजार जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, घर में लाते हैं. उसके बाद उसे बनाने का जो एक प्रोसेस है बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है. उस तरीके से हम भोजन को पकाते हैं और उसके बाद जब हम खाते भी नहीं है उसे यूं ही फेंक देते हैं, तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि सही बात नहीं है. हमारे साथियों ने ये बात लिखी है कि अन्न केवल हमारी भूख नहीं मिटाता बल्कि ये किसान की महीनों की मेहनत, पानी, मिट्टी की उर्वरता और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है. जब हम अपनी थाली में भोजन छोड़ते हैं तो हम केवल एक निवाला नहीं फेंकते बल्कि उस तक पहुंचने में लगे अनगिनत संसाधनों और प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं.
1: बिल्कुल. और इसी तरह हमारे एक साथी और लिखते हैं कि व्रत लिखते कि हल्की फुल्की बात है ना जाए व्यर्थ, उनका एक भी दाना अंक एक ही दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए. हमें ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस अंक को, इस मतलब अन्न को उगाने में कितनी मदद करते हैं. इसलिए अपनी थाली में जितना लेना है, जितना आपको खाना है उतना ही आपको लेना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं और उतना ही आप थालियों में डालें. अगर आप शादी या पार्टियों में जैसे जाते हैं देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप ले लेते हैं या गिलास भी उसमें लेके थाली भर के उसमें जूठा छोड़ देते हैं, मतलब लिया थाली में और जूठा छोड़ दिया, तो अनाज की जो होती बर्बादी ही हो जाती.

0: सकती है, इसीलिए कहा गया है कि आप बिल्कुल उसी हिसाब से ले जितना आप खा सकते हैं।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि हम जब अपने गुरुओं के मंदिर की में जाते हैं, वहाँ की बात है कि इतनी अच्छी लगती है वहाँ की उनकी बात की, वहाँ दो लोग सबकी थाली चेक करते हैं कि किसी ने खाना बचाया तो नहीं है, उसे वही पूरा खाना पड़ता है, तो अब सब लोग उतना ही लेते हैं जितना उन्हें खाना होता है। वैसे भी हम पहले थोड़ा कम लें और फिर चाहिए तो और ले लें। और देखो, जो भोजन व्यर्थ होता है ना, उसका एक कारण ये भी होता है, कोई भी जैसे समारोह हुआ, शादी समारोह या कोई भी ओकेजन होता है, तो वहाँ खाने में बहुत सारी वेराइटी बहुत होती, बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं, और व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे व्यंजनों को चख तो लूँ,
0: कैसे खा सकते हैं आप सोचिए,
1: जबकि उसके पेट में उतनी जगह होती नहीं है, लेकिन वो सब ले लेके चखना जरूर चाहता है, और उस चक्कर में जब कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी उसको कम पसंद आती तो वो लेता है और छोड़ देता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, कि हम थोड़े अगर व्यंजनों की संख्या अगर कम रखेंगे तो शायद भोजन की बर्बादी कम हो, ऐसा मुझे लगता है।
0: वो तो खैर ये अपना सोचना, लेकिन आजकल लोग दिखावे के चक्कर में तरह तरह की चीजें रखते हैं, और सलाद के भी इतने सारे वैरायटी होती है, फ्रूट्स की भी होते हैं, स्टाल होते हैं कि सब तो नहीं खा सकता कोई, तो ठीक है आप उन्होंने लगाया ये आप उनको अपना अपनी तरह से सबको स्वागत करना है, लेकिन हम अपने लिए अपनी थाली में अन्य का स्वागत हिसाब से करें वो ज्यादा सही है। और हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे मंदिर में जहाँ खाना होता है वहाँ दीवारों पर लिखा होता है खाओ मन बचाओ नकन, और इतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत सुंदर सी बात है। इसी तरह एक साथी और लिखते हैं कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाए, इसके लिए घर या सामूहिक भोजन के वक्त ये बात ध्यान में रखें, इतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। सभी ने ऐसी बात लिखी है। और थाली में लिया हुआ खाना झूठा होकर या बचकर बर्बाद ना हो, शादी या पार्टियों में अक्सर देखा गया है कि बुफे सिस्टम में कुछ लोग थाली में इतना ज्यादा भोजन ले लेते हैं कि दूसरी बार लेने जाना ना पड़े, इस ना लेने जाने की मानसिकता से भरी आलस ही खाने की बर्बादी का कारण अक्सर बनती है। तो इन चीजों का भाई ध्यान रखें कि जिसने भी आपको बुलाया है स्वागत सत्कार में, आपके लिए भोज का इंतजाम किया है, आयोजन किया है, तो उसके खाने की आप कद्र करें,
1: बिल्कुल
0: उसको व्यर्थ ना जाने दें।
1: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अन्न का एक एक दाना कीमती है और इसे व्यर्थ होने से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो सिर्फ खाना बर्बाद नहीं होता बल्कि उसे उगाने में लगी किसान की मेहनत और भी जाती है, और यहाँ कुछ छोटी और व्यावहारिक आदतें दी गई हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि थाली में उतना ही ले जितनी भूख हो, और बचे हुए भोजन का सही उपयोग, यदि खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में सुरक्षित रखें और अगले समय किसी नई रेसिपी बनाने में उसका उपयोग करें। और एक ये भी बात लिखी है कि जरूरतमंदों की मदद करें, यदि किसी पारिवारिक समारोह या पार्टी में भोजन अधिक मात्रा में बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय पास के किसी शेल्टर होम या जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। खरीदारी की योजना जो है उसके बारे में बाजार जाने से पहले घर में मौजूद सामान की सूची बना लें ताकि जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर खराब ना हो। और लिखा है कि अन्न ही जीवन है, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम न तो खुद भोजन बर्बाद करें और न ही दूसरों को करने दें।
0: और हम लोग पहले एक गीत सुन लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।

0: होश उड़ने की यहाँ पर बात हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई लोगों को देखते हैं बहुत सारा भोजन बनाते हैं, फेंक देते हैं, तो उनको जब फेंकते हुए हम देखते हैं ना, तब भी हमारे होश उड़ जाते हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस भोजन को लाने में, बनाने में इतना पैसा खर्च, इतनी मेहनत खर्च, इतना इसके अंदर संसाधन लगते हैं, और जब फेंका जाता है तो कैसे लोग इतना आराम से फेंक देते हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारा दिल नहीं करता है
1: बिल्कुल फेंकना,
0: तो
1: बिल्कुल भी
0: तब
1: नहीं,
0: हमारे भी होश उड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही आपने कहा है। और देखिए हम लोग समय समय पर बताते भी रहते हैं अपने व्यंजन वाले में कि अगर कोई चीज है आपके पास घर में बची है, जैसे चावल बचा है, तो आप उसका चावल को भी दूसरी तरह से बना सकते हैं, चाहे उसको फ्राई कर लीजिए, चाहे आप चावल को पीस करके उसमें थोड़ी सूजी बेसन मिला करके आप उसमें डोसा जैसा बना सकते हैं। चावल की भजियां भी बहुत अच्छी बनती है, कच्चे चावल की
0: कटलेट भी बनती है।
1: हाँ, तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: तो अन्न आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका अन्न जो है बेकार नहीं जाएगा। और अगर आपको जैसे, और किसी को देना है, मंजू जी एक बात मुझे यहाँ पर याद आई कि अगर आपको खाना किसी को देना है, तो देने से पहले एक बार खाने को आप चेक जरूर कीजिए।
0: हाँ,
1: कि वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, बासी तो नहीं, बासी में गंध तो नहीं आ रही है, वो खराब तो नहीं होने लगा है। अगर ऐसा खाना अगर आपके पास है और आप चाह रहे हैं नहीं इसको दे दे, नहीं वो काम बिल्कुल मत करिए। आप उस अन्न को आप मिट्टी में आप दबा दीजिए, जिससे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो फिर भी ठीक है एक बार, लेकिन खाना कभी किसी को गलत मत दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: ऐसा ना सोचे कि चलो हम जो नहीं खा सकते हाँ, तो दूसरों को दे दें। जो भोजन आप खा सकते हैं, जो खाने लायक है, उसी को आपको दूसरों को देना है। ऐसा नहीं है कि जो खराब हो चुका है वो हम दे दें और वो खा करके बीमार हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। चलिए अब हम अपने दूसरी बात की तरफ चलते हैं। राई का पहाड़, ये कहावत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनना बड़ा ही अनूठा मुद्दा है। राई का पहाड़ बनना से तात्पर्य है कि छोटी छोटी बातों को एकदम लंबा बना देना। और एक और साथी यही लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, जैसे किसी साधारण सी बात या छोटी सी समस्या को बेवजह तूल देना और उसे बड़ा मुद्दा बना देना, ये एक बात है। और इसी से संबंधित एक और एक ऐसी कहावत है कि गरम तेल में राई की तरह उछलना, ये भी इन्होंने
1: बिल्कुल मतलब जैसे कोई बात चल रही है और किसी ने थोड़ी सी बात शुरू करी और वो आपके मन के या लोगों के मन के खिलाफ है, लेकिन आप उसमें उसको थोड़ा सा और हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भाई तेल में जैसे राई चटकती है ना, वैसी चटकेगी। कई बार ऐसा होता भी है कि साथ सारी सहेलियां या सारे दोस्त खाना खा रहे हैं और एक कुर्सी की वजह से आपस में हो जाए कि नहीं ये कुर्सी पे हम बैठेंगे, उस पे हम बैठेंगे, तो ये भी राई के पहाड़ वाली जैसी हालत हो जाती है।
0: वैसे
1: तो,
0: देखो मंजरी, अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो राई का पहाड़ बनाना उन्हें बहुत पसंद होता
1: है, उन्हें मजा आता है चटकारे लेके। हाँ। उसमें किससे अपने डालेंगे उसकी बात को, कहते ना मुंह से बात निकली।
0: हाँ।
1: किसी ने कहीं कहीं तक कही, लेकिन दूसरा उसको मिर्च मसाला लगा के आगे तक बढ़ा देता है। और जैसे राई के उछलने वाली बात होती है, एक बार इसने कहा, उससे कहा, उससे कहा, हर समय बदलते हुए दूसरे रूप में वो सामने आ जाती है।
0: हाँ, जब एक ही बात अगर मतलब 5-6-10 लोगों तक पहुंचती है तो उस

0: स्वरूप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, और जब वापस पहले व्यक्ति तक वो बात आती है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका
1: आ
0: रहता है,
1: चुका है।
0: यानी जो बात उसने कही होती है और जो बात लोगों तक पहुंची है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर हो जाता
1: तो
0: है।
1: बड़ी समस्या होती है ना मंजू जी कि अब वो जो हमने जो सच बोला है उसको हम कैसे साबित करें, वो बड़ी एक समस्या होती है कि फिर या तो लगता है कि जिसने बात फैलाई है ना उसी को सामने बुलाओ और आमना सामना कर लो,
0: लेकिन ये
1: तो
0: संभव नहीं होता।
1: नहीं हो पाता,
0: किसने किससे कहा, क्या कहा, कैसे कहा, ये सब समझना। और दूसरी बात यह है कि ये सब करने में तो हमारा बहुत सारा समय भी चला जाएगा और हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च हो जाएगी। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप घर का काम करते हैं, आप बाहर का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उसके लिए समय की भी जरूरत होती है और ऊर्जा की। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो फिर तो हम अपना काम ही नहीं
1: तो
0: कर पाएंगे।
1: अच्छा है कि उन्हीं को छोड़ दो, तुम्हें फैलाने दो जिसको फैलाना है।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन जो जिन बातों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत ना है उन बातों पर ध्यान ना दें। और जो लोग राय का पहाड़ बनाते हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इन व्यर्थ बातों में अपनी ऊर्जा को खर्च ना करें, बल्कि जो आपके पास समय है, जो ऊर्जा है, उसको किसी सकारात्मक कार्य में आप लगाएं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेहत बनाने के लिए भी हम ये समय दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात,
0: थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाइए, और किसी और काम में जिससे आपको थोड़ा कुछ अर्जित हो सके अगर उसका उपयोग उसमें करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: बिल्कुल सही बात। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बना दे कि रिश्तों में दूरी आ जाए। बात चाहे राय जितनी हो, समझदारी यही है कि उसे पहाड़ ना बनने दे। रिश्तों की बात जहां तक है मंजू जी कि अगर आपके रिश्तों में ऐसे मनमुटाव हो गए आपको पता भी नहीं चला है कि किसने क्या किससे कह दिया, तो जब मिले तो वो बात आप क्लियर जरूर कर लें जिससे कि ऐसी दूरियां ना बने। और एक लिखते हैं कि राय का पहाड़ कितना ही बड़ा हो पर खामोशी रूपी एक गोटी ही काफी है। बहुत सही बात कही है कि वो कितना भी राय का पहाड़ बना ले उसकी बातों को जवाब ही मत दे, खामोश हो जाए। तो मौन की तलवार जिसे कहते हैं ना वो बहुत तेज होती है। तो बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने लिख करके भेजी है। तो कहना चाहिए कि राय, एक और लिखते हैं कि राय का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को इलास्टिक की तरह खींच करके बड़ा करना है, जिससे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। और ये क्या कहते हैं कि जल्दी से ही जिसे कहते हैं कि आप नॉर्मल होने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा आप खींचे मत, इलास्टिक की तरह मत खींचे बातों को, वहीं पर थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक है। तो हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: वाली उम्र है।
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना।
2: देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की पहाड़ जैसी गलत बात को और किसी को बतानी हो तो उसे राई जैसा छोटा करके बताओ, क्या बात है। और अगर किसी की बात बहुत अच्छी है तो वो राई जितनी है तो उसे पहाड़ जैसा बनाकर बताओ ताकि हर कोई उससे कुछ सीख सके। बहुत सुंदर सी इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, तो ये बहुत मतलब सारगर्भित चीज़ इन्होंने लिखकर भेजी है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुहावरों की दुनिया भी गजब है। मेरे पास एक पुरानी किताब थी जिसमें वो कहानियां थी, जिस कारण वो मुहावरा बना। वो किताब कोई मांग कर ले गया और वापस नहीं दी। राइस से पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना होता है।
2: क्या बात, तो किताब देनी चाहिए किसी की भी ले जाओ तो देनी चाहिए।
3: हाँ,
2: और
3: हाँ, पुस्तक जो कई बार है ना, होता क्या है ना, पुस्तकें किसी को बड़ी प्रिय होती है इसीलिए वो खरीदते हैं और वो संग्रह करके रखते हैं और आपको इतने उदार मन से वो पढ़ने के लिए देते हैं, और जब आप उनकी पुस्तक उन्हें नहीं लौटाते हैं। और कई बार तो क्या, जैसे किसी की आदत होती कि पुस्तक किसी ने मांगी दे दी और उसे याद भी नहीं रहता कि मैंने कौन सी पुस्तक किसको दी, और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने इतनी उदारता दिखाते हुए आपको कोई पुस्तक दी, उन्हें पढ़कर वापस लौटा दीजिए।
2: आप भी तो उदारता दिखाइए, उदारता
3: जब वो मांगने आए तो राई का पहाड़ मत बनाइए।
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके मन में अफसोस तो होगा, ग्लानी तो देखिए होगी कि आपके पास किताब है, आपको पता है कि आपके पास किताब है, आपने वापस नहीं करी, तो आप अपनी ग्लानी को क्यों बढ़ा रहे हैं। आप
3: बिल्कुल
2: सहृदय उन्हें उदारता के साथ वापस कीजिए। और देखिए बहुत सारे हमें कमेंट्स और भी मिले हैं, अलग अलग विषयों के मिल गए, तो हम उनको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। कि ये लिखते हैं कि अन्य के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी नानी हमेशा हम लोगों को बोलती थी बार बार कि संत का एक क्षण भी और अन्य का एक भी कर्ण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी तो हम लोगों को वो सब सिखाया गया, लेकिन इसलिए हम लोगों ने भी अपने बच्चों को सिखाया है कि जितना खाना हो उतना ही लें, अन्य का एक दाना भी थाली में ना छोड़ें, और ईश्वर की कृपा है कि बच्चे भी उतना ही लेते हैं जितना खाते हैं। कभी मेरे घर में कोई खाना बर्बाद नहीं होता है। कितना सुंदर आपका घर का स्वरूप होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि आप एक भी दाना अन्न का वहाँ पर बर्बाद नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छी सी बात है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे हैं है कि अन्न में ही ब्रह्मा ही नहीं अपितु इसमें अन्नपूर्णा देवी का वास भी माना गया है, और इस दृष्टिकोण से उसकी बर्बादी, वो भी आज के महंगाई वाले युग में, तो ये तो जानकर के अज्ञानता का ही परिचायक है। फिर वैसे ही अन्य प्राण के दृष्टिकोण से अन्न की बर्बादी से बचते रहना ही श्रेयस्कर है।
2: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अन्न का हर दाना सिर्फ खाना नहीं, किसी के मेहनत

0: सीने और उम्मीद का फल है। थाली में उतना ही ले जितना खा सकें, क्योंकि अन्न का सम्मान मेहनत का सम्मान है। बहुत सुंदर सी बात है, मुझे तो लगता है ये वाला जो संदेश है ना, ये लिख करके अपने घरों में लगा लेना चाहिए।
1: एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान या अपने आते हैं और वो पूरा खाना फिनिश करते हैं, ये फिर उतना ही लेते हैं जितना वो खा सके, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। और जो भी झूठा खाना छोड़ते हैं, हम उन्हें ज़रूर कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, उतना ही लें जितना आपको खाना है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि भोजन करते समय थोड़ी देर के लिए सोचे कि ये भोजन जो हम लोगों को आसानी से मिला है और खा रहे हैं, उसको पैदा करने में किसानों ने कितना पसीना बहाया, कितनी कठिनाइयों से होकर हमारी थाली में आया, तो अन्न का एक भी दाना नहीं फेंक।
1: चलिए अब हम अपनी बातों को थोड़ा विराम दे देते हैं, नहीं तो लोग हमें ये कहेंगे कि अरे आप तो छोटी बातों को राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो अब घड़ी की तरफ हमने नजर डाली और समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, तो अब हम श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
0: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बरसों के संघर्ष और नामुमकिन हालातों के बावजूद अपनी मेहनत और सच्चाई से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मिस्तान के सनी से लेकर द फैमिली मैन के जेके तलपड़े तक, इन्होंने हर किरदार में वो आम और सहज व्यक्तित्व दिखाया जिससे हम सब खुद को जोड़ पाए। और आज जैसे जैसे हम बातचीत में आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे यकीन है कि हम ये समझ पाएंगे कि ये कहानी जो है सिर्फ कामयाबी की नहीं है, ये धैर्य और डटे रहने की मिसाल भी है। तो बिना देरी किए आज स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान शारिब हाशमी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती के साथ में काफ़ी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है।
1: जी, जब हम आ रहे थे और लाइब्रेरी के दौरान जब आप देख रहे थे, साथ में फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जुड़ाव तो है। हाँ। किस तरह का जुड़ाव है रेडियो से या विविध भारती से, वो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज़।
2: हाँ, कि मतलब क्योंकि बचपन हमारा तो रेडियो पर ही पूरा गुजरा है और ख़ासकर उस वक्त तो मतलब मैं 80s किड, तो उस वक्त तो ज़्यादा रेडियो लोग

0: ज़्यादा सुना करते थे,
1: जी
0: और शुरुआत ही विविध भारती के कार्यक्रम से होती थी सुबह की,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जिसमें नए गाने आते थे, और रात को जो है वो थोड़े पुराने गाने होते थे, वो बेला के फूल,
1: बिल्कुल
0: और तो मैं सारे सुना करता था। मैंने कभी पुराने गाने जो हैं वो बैठ के कभी मैंने याद नहीं किए, वो रेडियो पे गाने सुन सुन के अपने आप याद हुए हैं, जो अब तक याद हैं सारे
1: बिल्कुल
0: गाने, किशोरदा के, रफ़ी साहब के, मुकेश जी के, जो भी गाने मैंने याद किए हैं, तो वो सब थैंक्स टू विविध भारती है।
1: जी। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आज, मुझे लगता है दिलचस्प बातें होगी और गीत भी हम आपसे सुनेंगे क्योंकि
0: अरे
1: आप गाते भी बहुत अच्छा है
0: हाँ,
1: ये
0: बहुत
1: मैं
0: अच्छा तो
1: जानती
0: नहीं, लेकिन
1: हूँ।
0: हाँ शौकिया तौर पे।
1: जी हाँ जी हाँ। शुरुआत रेडियो की बातें से हुई तो बचपन की यादें, कुछ कैसा रहा परिवेश घर का? आपके पिता एक पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, तो क्या उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री हुआ या किस तरीके से, या आपने खुद ही अपना ये रास्ता चुना?
0: ये चुना तो मैंने खुद ही रास्ता, लेकिन ये उनका जो प्रोफेशन था वो, मतलब उसने मुझ पर बहुत असर छोड़ा था, तो उसी
1: जी
0: वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। उन्होंने मतलब मुझे, मैंने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी थी कि मुझे कहीं पर लगवा दीजिए या कर दीजिए, तो वो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट के तौर पे जॉब मिला, एडी,
1: एडी
0: तो हाँ, तो वैसे करियर की शुरुआत हुई थी। लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर, मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम
1: पर
0: देगा ये,
1: फिल्मी हस्तियों को आपने देखा है अपने घर पर
0: हाँ
1: बचपन
0: वो
1: से
0: देखा था, तो
1: आते
0: उस
1: जाते?
0: वजह से मतलब मेरा, मतलब अगर मैं इस लाइन में हूँ तो वो मेरे डैड की बदौलत ही हूँ, उनकी
1: जी
0: वजह से हूँ।
1: जी जी जी उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें, उस टाइम आप सेट पे जाते थे या किसी से मुलाकात हुई या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम नजर आए?
0: उस टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। अब मैंने वैसे बचपन में एक एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में, दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा कैसे बनी कहानी। तो
1: अच्छा
0: उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था, हमने एसएल स्टूडियो में शूट किया था उसको, ट्रॉम्बे में, बहुत दूर, जब बचपन में तो बहुत ज़्यादा दूर लगा था। अब और ज़्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह
1: जी
0: से। तो हम वहाँ पर गए थे, और मेरा मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ, और मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें, डांटते हैं और मैं डरता हूँ, मुझे मुझे मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा, मैं डरा, तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ, और वो अपने डायलॉग भूल गए। उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया है, तो
1: जी
0: मतलब मुझे डरना ही था इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला, अरे ये अच्छा एक्टर है, लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया, और ऐसा कोई वो नहीं था तब कि, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा, अब हीरो वाली तो पर्सनैलिटी है नहीं, और मुझे बाकी कुछ करना
1: नहीं, आप जो हैं जिस भी पात्र में ढलते हैं हमें बहुत अच्छे लगते
0: थैंक
1: हैं
0: यू, थैंक
1: और
0: यू सो
1: बहुत
0: मच।
1: पसंद किए जाते हैं। और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
0: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर एसएससी बोर्ड में था, और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में, मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए किया है, और 2 साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया, और बाद में 3 साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था,
1: जी
0: तो वहाँ पर मतलब मेरी पूरी कायापलट हुई एकदम। वहाँ काफ़ी, बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला, इस्माइल यूसुफ में भी काफ़ी शुरू हो गया था
1: जी अच्छा, थिएटर और ड्रामा
0: थिएटर
1: ये।
0: ड्रामा, तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ, मुझे नाटक मुझे हुआ ही, मिला ही नहीं ना स्कूल में मैं कुछ कर पाया, इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहाँ पर नाटक हुआ नहीं, एक एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और वो फिर वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे, मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली वहाँ पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में, उन्होंने भी एंट्री मारी थी
1: अच्छा
0: और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे, पता नहीं क्यों। तो मेरा मतलब पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूंगा, वो हुआ ही नहीं, फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के
1: जी
0: साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया,
1: जी
0: फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए।
1: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, उस बारे में
0: हाँ
1: भी हम बात
0: जी जी
1: करेंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं।
0: मेरी पसंद का कोई गीत, यार बहुत सारे गीत हैं मेरी पसंद के, आपकी याद आती रही रात भर अगर,
1: अच्छा,
0: गमन से,
1: थोड़ा सा गुनगुना देंगे।
0: अरे वो तो बहुत मुश्किल गाना।

0: क्या बात है, सुनवाते हैं गीत
1: अभी से मैं
0: अपने
1: ऐसे गाने बोलूंगा जो मैं अच्छे से गा सकूं।
0: नहीं, हर गीत पे
1: जैसे
0: हम
1: वो कहते
0: नहीं
1: हैं ना
0: गवाएंगे
1: कि
0: आपको अगर आप
1: बच्चों
0: ऐसा
1: को,
0: चाहेंगे
1: हाँ,
0: तो।
1: कि बच्चों के बोलते हैं कि
0: जी
1: महाराष्ट्र कौन से स्टेट में रहते हो, तो मैंने महाराष्ट्र उसकी स्पेलिंग बताओ। नहीं, मैं गोवा में रहता
0: नहीं,
1: हूँ।
0: आप
1: तो
0: बेफिक्र रहिए।
1: अब मैं सिंपल वाले गाने बताऊंगा।

0: अच्छा, 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है, तो
1: हाँ
0: उससे
1: हाँ
0: पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद में हुई, पहले मैंने,
0: अच्छा,
1: मेरा पहला काम जो है
0: पहला
1: वो
0: काम
1: एज
0: जो
1: एन
0: था,
1: असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी,
0: हाँ,
1: तो मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब हम काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे, और हम साथ में काफ़ी गाने वाने गाया करते थे, और वो कॉलेज में मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में रांची प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, सूरज जी को वो असिस्ट कर रहे थे, और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी। और उनके ज़रिए मुझे उनके ही एक एक्स कलीग जो थे, नव कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे, और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया, और मेरा एक इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और इस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिम्पल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी, परेश
0: जी
1: रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी, तो बहुत मज़ा आया था, मेरा पहला काम था वो, और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था वो, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
0: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है।

0: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी। और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफ़ी काम की तलाश चली, और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज ए राइटर, वो भी राजुल की बदौलत। मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत ही बड़ा
1: अच्छा
0: योगदान है। तो
1: जी,
0: उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो
1: झुकाव,
0: उस तरफ
1: रुझान.
0: बढ़ाया, रुझान। तो वो उन्हें पहले एक कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था
1: जी.
0: जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था। तो मैं उस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था राजश्री प्रोडक्शंस में। वह हमेशा जब ऑफिस आवर्स ख़त्म होते थे तो मैं शाम को वहाँ पहुँचता था, हम गप्पे वप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे।
1: जी.
0: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए मिला था। तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो उन्हें बहुत पसंद आया, तो और बोला अरे यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे मतलब तेरी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी कमांड है।
1: कमांड है.
0: तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख विख भी सकता हूँ। फिर उन्हें एक एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा मतलब MTV के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी,
1: अच्छा.
0: उसमें उस वक्त VJ थी वो उस पर MTV में। तो वो शो लिखना था, उनके एंकर लिंक्स VJ लिंक्स जो होते हैं
1: जी.
0: कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा। तो फिर और शोज लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ETC। मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफ़ी। और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला, साल 2 साल गुजर गए, राइटर का तमगा लग गया।
1: जी.
0: फिर नौकरी की मैंने MTV में 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल चैनल V में था। तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी। मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज।
1: जी.
0: तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई। बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने इंजॉय किया वो MTV के जो 4 साल थे, वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मैंने वहाँ पर सीखा। बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ, जिनके साथ। तो
1: जी,
0: वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं MTV में।
1: बिल्कुल. यहाँ पर आपके गीत पसंद के, कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं.
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया।
1: आके सीधी. क्या बात है, क्या बात है,
0: थैंक
1: बहुत खूब.
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए।

0: गुजरिया ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी, गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से, और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फहरिस्त में हैं, आपके खाते में शामिल हैं। हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की, काफ़ी
1: जी,
0: चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है, उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ?
1: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था। 4 साल एमटीवी में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था, और उस वक्त मेरे एक दोस्त, मेरे एमटीवी के ही एक मतलब एक्स कलीग जो है स्वप्निल कोरे, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में, और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। रोल क्या, वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते, बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया। और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे, वो मुझे क्यूज़ दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का, तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा, कुछ वो नहीं था उस
0: जी
1: ऐसे रोल के लिए डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है, वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते।
0: जी
1: तो बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को, और इतनी तारीफ की थी, और मतलब डैनी बॉयल साहब हैं
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था, ना कोई ईगो था, ना कोई ऐसे अहम था कुछ। इतना प्यारा इंसान, बहुत मतलब मेरे लिए स्लम डॉग मिलेनियर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था,
0: जी
1: लेकिन उन्होंने 2 दिन का रखा था बफर। फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था, और नेक्स्ट डे शूट हुआ था, तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैं बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया, तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले, और पहले उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए।
0: अच्छा
1: उनको कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब करने,
0: बिल्कुल
1: हाँ मुझसे मिलने की ज़रूरत थी, बट उसके बावजूद वो आए। और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इम्प्रोवाइज़ की थी कुछ, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी, वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी।
0: जी
1: तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वी हैव एडेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। मतलब मैं कभी ज़िंदगी भी नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा। मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1,000 लोगों को सुनाता
0: और जब तक है जहाँ उससे भी
1: हूँ।
0: आप रिलेट किए, उससे कैसे जुड़ना
1: हाँ,
0: हुआ?
1: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था, और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए, सैकड़ों, और सिर्फ रिजेक्शन मिले। एक ऐड किया था, एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था।
0: जी
1: तो फिर से मुझे, क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी। एक चैनल था यूटीवी बिंदास, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया एज AVP प्रोग्रामिंग, और वहाँ कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फ़ोन आया,
0: अच्छा
1: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो यूट्यूब पर देखी, और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके
0: जी
1: सीन्स के साथ
0: अच्छा
1: ऑडिशन दिया, फिर वो हुआ। उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया, उसके बाद मुझे जो जैन के जो जो मैं प्ले करने वाला
0: जी
1: था
0: जैन
1: उसके सीन्स दिए, और फिर उसके 3 राउंड हुए। और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर करने लिया था, उस वक्त
0: अच्छा
1: वो शानू की असिस्टेंट थी,
0: हाँ।
1: तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ें जो मेरे साथ में हो रही थी, और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था, और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो मैं आराम से मतलब
0: मौका
1: कल्टी
0: मिल गया
1: मौका मिलते
0: आपको
1: ही मतलब मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था
0: जी
1: और ऑडिशन देके आ जाता था। तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फ़ोन किया, शानू ने, कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है। तो मुझे लगा ठीक है, अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूँ। तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट। बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फ़ोन आया, और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था, और अक्षत कपिल

0: जो उस वक्त यसजी के चीफ थे, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार और ले लो। तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में, और वहाँ पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया। तो ऑफिस पहुंचा ही था मैं कि आधे घंटे में फ़ोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है, दो
1: अच्छा,
0: दिन बाद
1: उसी
0: या
1: के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था।
0: हाँ सेम रोल का ही
1: अच्छा,
0: मैंने इतनी बार
1: हाँ हाँ
0: ऑडिशन
1: हाँ
0: लिया
1: हाँ
0: और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों
1: अच्छा,

0: सेम रोल कहीं
1: अच्छा
0: मैंने इतनी बार
1: हाँ हाँ
0: ऑडिशन
1: हाँ
0: लिया
1: हाँ
0: और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग दोनों, शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए
1: हाँ
0: था
1: वो कुछ
0: और
1: अलग
0: मैं
1: क्लिक
0: उस
1: कर
0: वक्त
1: गया।
0: एकदम ऐसा था 90 किलो का
1: तो हमेशा ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है ये ऑडिशंस, क्या इतना लंबा होता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बार
0: अलग
1: बार
0: अलग
1: राउंड्स देने
0: प्रोजेक्ट पे।
1: पड़ते हैं?
0: हाँ जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज़्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म
1: अच्छा
0: में ऑडिशंस के। अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत ज़रूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था, ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का। सिर्फ मैं एमटीवी में मैंने मतलब काफ़ी जो हम स्केच कॉमेडीज़ करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा, एमटीवी बकरा करता था, अदरवाइज़ मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान और उसके ज़रिए मेरा रियाज हुआ एक्टिंग
1: बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल। लेकिन ये ऑडिशंस में, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं ना
0: बहुत
1: कहीं,
0: सारे।
1: बहुत
0: हाँ
1: सारे, तो कैसा महसूस हुआ, या वो हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आपकी, नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं, रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं, आगे और कोशिश
0: वो
1: करेंगे, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं, अभी मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
0: नहीं, मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसलिए किया था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत और अगर अब वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना वो मतलब छोड़ने नहीं देता, और मैं थोड़ा बचपन से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ और मेरे आसपास भी काफ़ी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो
1: बिल्कुल।
0: वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही और उनकी ही बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया। वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है हम सब
1: हम सब
0: इसमें
1: साथ
0: तुम्हारे
1: में
0: साथ
1: हैं।
0: में हैं। तो वही, और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है बस
1: बिल्कुल।
0: जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो जाएगा
1: वो जो कूट कूट के भरा है टैलेंट, वो नजर आया फिल्मिस्तान फिल्म
0: जी
1: में,
0: हाँ
1: तो वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने। उसमें डायलॉग भी है
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: कि
0: उसके
1: मेरा
0: डायलॉग मैंने
1: जन्म
0: लिखे
1: ही,
0: हैं फिल्म
1: हाँ वो आप ही ने
0: के
1: लिखे हैं कि मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए हुआ
0: यस
1: है,
0: यस
1: तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे, इसके
0: फिल्मिस्तान
1: बारे में थोड़ा सा।
0: मैं असल में जब मैं तब ये यूटीवी मंद्रास में ही नौकरी मेरी चल रही थी उसी दौरान जब जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहाँ पे 3-4 महीने जो मैंने वहाँ पर गुजारे थे उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की। तो मैं ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड, मैं कहता था हाँ ये अच्छा है, बहुत सही है, ज़्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया और नितिन को भी जब मैं जब तक ये जान में सेलेक्ट हुआ उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए, और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है और मैं सोचता था कि कहाँ वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में मेन लीड में वो भी, बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोरा के किरदार के लिए और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो वो एक जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई और उसी दौरान फिल्मिस्तान भी आया,
1: फिल्मिस्तान।
0: तो वो मैं मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की वो मेरे हाथ ही नहीं आई, जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कांधे पे आके मतलब जो है वो बैठ
1: बिल्कुल। कहते हैं ना,
0: गई
1: जिसे आप चेज करते हैं वो मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिल
0: वो
1: जाता
0: मिल
1: है,
0: जाता है, तो वही
1: ऐसे
0: हुआ
1: कुछ
0: मेरे
1: हुआ।
0: साथ में और इस तरीके से फिल्मिस्तान ही हुई और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
1: बिल्कुल। यहाँ पर आपकी पसंद का गीत?
0: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में, और मुझे भी एक

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी, मतलब बहुत, मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोड़ा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी
0: डायलॉग भी
1: है।
0: आपने लिखे हैं।
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं, हाँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा। बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीज़ें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूँ तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था, मैं उससे मतलब उस भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था, और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नज़र आने लगा, और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा, थोड़ा। तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में, मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो
0: उन्हें
1: परफॉर्म
0: पेश
1: करने
0: करने
1: में,
0: में।
1: जो है मुझे थोड़ा दो दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे मैं बच्चों की तरह नाचता
0: जो कि हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा,
1: था।
0: बिल्कुल दिल खोल के, जिसे बोलते हैं ना कि बस यही मेरी, यही सब कुछ है, उस तरह से आपने सब कुछ उसमें डाल दिया था,
1: जी
0: पूरा
1: थैंक
0: एंटरटेनमेंट। और वो
1: यू।
0: डायलॉग भी है उसमें कि
1: हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ
0: पैदा
1: हूँ, और जब मैं लोगों
0: हुआ।
1: को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: जी हाँ। फिल्मिस्तान के बाद आपने राम सिंह चार्ली करके भी फिल्म की है, और उसमें
1: जी
0: भी नितिन कक्कड़ जी हैं और कुमुद मिश्रा, उन्हीं
1: हाँ
0: के साथ काम किया है।
1: बिल्कुल,
0: तो फिर से एक टीम के साथ फिर से काम करना इजी भी होता है, और
1: बहुत।
0: कैसा ये
1: हाँ,
0: अनुभव है?
1: नितिन के साथ तो मेरा अलग कंफर्ट लेवल ही अलग है, हमारी हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग तो मैंने उनके लिए, और मित्रों एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स
0: हाँ
1: लिखे हैं,
0: जी।
1: नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, और राम सिंह चार्ली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है, बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है।

0: वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर। वहाँ पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि एक चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर की अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें तो कैसा रहेगा। और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था, यार ये तो कमाल होगा। और फिर हमने धीरे धीरे, नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे और करते करते करते राम सिंह चार्ली की स्क्रिप्ट तैयार हो गई और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ। और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज़ पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें। और हमने फिर, मैंने, नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की। और कुमुज्जी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने और आगे शायद पता नहीं कब करूँगा या करूँगा भी, यानी वो भी नहीं पता। लेकिन अगर सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने प्रोड्यूस की तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यस, मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है।
1: मैं प्रोड्यूसर
0: मैं प्रोड्यूसर हूँ तो राम
1: हूँ
0: सिंह चार्ली का हूँ। ये
1: जी
0: एक खूबसूरत फिल्म है और
1: बिल्कुल।
0: यस।
1: तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियां या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है?
0: मे बी शायद मैंने वही लाइफ जी है, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ मैं,
1: जी,
0: वही रचा
1: और हम
0: बसा है
1: उससे
0: अंदर।
1: काफी रिलेट कर पाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: टोटली रिलेट कर पाते हैं। और मैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो, आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं। तो मैं, मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला, मतलब चेहरा भी वही है आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं। इसीलिए फिल्मिस्तान का सनी अरोरा या तरला का नलिन दलाल या जो भी मैंने ज़्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने, अगर महरूनी में जो
1: हाँ,
0: किया है,
1: महरूनी की बात करते हैं। हाँ
0: हाँ,
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो वो सब वैसे ही हैं। इट्स ओनली 47 डिग्रीज में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
1: जी।
0: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाएं उतना अच्छा होता है, और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को। बट ज़्यादातर जो है वो एक, वो हाँ, मिडिल क्लास वाला, क्या
1: और
0: कहेंगे
1: दर्शकों
0: उसको,
1: से भी वो कहीं ना कहीं
0: इमेज
1: जुड़ाव
0: तो
1: आ
0: है।
1: जाता है।
0: हाँ,
1: यहाँ पर आपकी पसंद का कोई गीत?
0: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, मतलब
1: हाँ।
0: काफ़ी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है। और घरौंदा, घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज़, तुम्हें हो ना हो मुझको तो
1: बिल्कुल,
0: इतना यकीन है, वो
1: वो
0: मुझे
1: सुनवा देते हैं, वो गीत
0: प्लीज़।
1: हम जरूर सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: बात तरला की जैसे आपने की, बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड के रूप में वो किरदार है, तो कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में भी काफी सपोर्टिंग रहे हैं आप कहीं ना कहीं। और जब आप एक चुनौती भरा वो फेज से गुजर रहे थे, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो आपकी वाइफ जो है नसरीन जी आपके साथ रही हैं, कैसे उस दौर से आप निकले हैं? अगर आप अपने निजी कुछ अनुभव बताना चाहें तो कैसे वो आपकी सपोर्ट रही हैं?
1: वो तो मतलब जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या ख़त्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफ़ी भरोसा था, उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज़्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था, लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी
1: और
0: ताकत रही हैं
1: जी हाँ,
0: आपकी।
1: वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जब मतलब चीज़ें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया था
0: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन।
1: जी
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे?
1: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी ज़िंदगी में, उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, बहुत करियर मेरा एक एकदम लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी जब तक जान हो चुकी थी, उसके बावजूद मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा था, फिर रिजेक्शंस हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था, एक दो फिल्में हो जाती थी और फिर मतलब लंबा एक गैप होता था, पैसे फिर ख़त्म होने लगे थे, तो वो बहुत अजीब सा मतलब दौर था, और ये और ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा सक्सेस का टेस्ट चखा था फिल्मिस्तान के ज़रिए, जब तक है जान के ज़रिए, और अब फिर से फिर ऑडिशन देना पड़ रहा था, फिर भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, फिर पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा था कि अब कहाँ से करें क्या करें, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। उस वक्त मुझे एक कॉल आया मुकेश छाबरा भाई के ऑफिस से, और ये जे के जो है उस वक्त जे के नाम तो नहीं था उसका, घोष था,

0: कैरेक्टर का नाम बंगाली कैरेक्टर था। तो मैंने ऑडिशन दिया वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तुम न्यूट्रल उसमें ही करो, कोई बंगाली एक्सेंट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं। और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, और अच्छा अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फ़ोन का इंतज़ार भी करने लगते हैं कि यार अब घंटी बजेगी, अब घंटी बजेगी। और हफ्ता 10 दिन लग गया और उसके बाद लेकिन फ़ोन आया। और मेरी पहले डीके साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाली में, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे। नेचुरली आपको कौन सा कोई एक्सेंट या डायलेक्ट जो है आप में, मतलब नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबल हैं। तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं उसको। फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब। तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शंस मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो, बहुत सारे मात्रे
1: जी।
0: फाइनली फिर वो जेके जो है, जेके तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया। और फिर जब आया, जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक, इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक बदलाव आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है
1: जी।
0: और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था। जैसे ही फैमिली मैन आया सीजन वन और वो OTT पर, मतलब एक अलग ही किस्म की, मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे।
1: बिल्कुल।
0: और लोगों ने बहुत देखा उसे और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे सब जगह। सीजन टू आया और रिस्पॉन्स जो है वो डबल हो गया। तो वो मेरे लिए, मतलब फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया। स्कैम आया, जबकि उसमें मेरा एक सीन था, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया
1: जी।
0: और फिर काम और मिलता गया, लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई। और मतलब वो मेरी ज़िंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है फैमिली मैन, और जेके ने मुझे बहुत प्यार दिया है।
1: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात की करें बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया, ये तो कुछ तो अलग आ गया है। तो क्या वो सब लिखा रहता है या?
0: नहीं नहीं, लिखी भी होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा। और सुमन कुमार जो है वो हमारे जो राइटर हैं, और फर्स्ट सीजन में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे, तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है। और लेकिन राज एंड डीके जो है ना, हाँ, वो कभी कट नहीं करते हैं। जब सीन खत्म हो गया जो पेपर पे था, उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते। और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम। तो वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ, और वो जब तक कोई हंसता नहीं तब तक वो कट नहीं होता।
1: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है।
0: हाँ, और उनके साथ बहुत मजा आता है। उनके साथ आपको, मतलब आपके एकदम टोस पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक, मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं। कमाल, बहुत ही मजा आता है उनके साथ काम करने में। और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं और उसमें से कुछ जमती हैं, कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की। राजेंद्री के बहुत हमें, मतलब आज़ादी देते हैं, जहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते जरा कंट्रोल। फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं, मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में। मैं मतलब एकदम, मैं आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि अरे यार आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है, आज मनोज सर के साथ शूट है, राजेंडी के हैं और मैं जेके बनूंगा और मज़ेदार कुछ कमाल करेंगे। और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट होता है। तो अब मैं सीजन 4 का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतजार कर रहा हूँ।
1: हमें भी इंतजार है, बहुत बेसब्री से इंतजार है हमें।
0: थैंक यू।
1: अच्छा, इन सीरीज में जहाँ पे एक्शन सीरीज होती है तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं वहां पर कैसे हेल्प होती है? स्टंट्स आप करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर?
0: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठा लेते हैं। और वो कोई बोलता भी नहीं है कि आप करो, अगर डिफिकल्ट होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं। और जहाँ पे जो हम खुद कर सकते हैं, भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है, तो वो वहाँ पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है और उसके बाद में फिर आप भी ग्रूव में आ जाते हैं,
1: यूज्ड टू हो जाते हैं।
0: कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे हैवान में था

0: मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो मतलब फेंकते हैं और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था, और वहीं तो वो पूरा शॉट था, तो मैं टेबल पे गया, फिर वहां से जमीन पे गिरा। लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है, मेरे तो नहीं है।
1: और हैवान में आपका किरदार, अगर आप कुछ बताना चाहें किस तरह से कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से।
0: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफी, मैं मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ। दो सीन्स हैं मेरे जो काफी, जिसमें एक असरानी साहब के साथ है, एक राजपाल जी के साथ में। तो असरानी साहब के साथ तो जब शूट हो रहा था, मतलब मेरे लिए, मतलब दोनों ही मेरे बहुत पसंदीदा
1: बिल्कुल
0: एक्टर्स हैं और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। असरानी जी का आखिरी सीन था वो, मेरे ख्याल से उसके बाद, उसके 10 दिन बाद उनका देहांत हुआ। तो मैं मतलब अब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं हैवान का हिस्सा बन पाया, प्रियदर्शन जी के साथ काम किया,
1: जी।
0: सैफ अली खान साहब के साथ, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वो।
1: कोई गीत जो आप हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं?
0: किशोरदा का एक और काफ़ी रेयर सॉन्ग है जो लोग कम सुनते हैं, जो कि है सैड सॉन्ग, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा यॉडलिंग का चीज़ उन्होंने की है, जो आगले लग जा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो आप प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल।

0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिब जी के साथ। और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है, अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान अभी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट
1: हाँ
0: पार्ट है। तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे आपने अपने ऑडिशन के तरीके को या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं तो उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहाँ टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफर नहीं है। तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल कर

0: के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन क्योंकि जो ऑडिशन होता है ना, अब उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्ट करने के। अगर आपको वहाँ पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है, यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए, और अच्छा करने का सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना, वो आपका बेहतर होगा, और टिके रहना एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए, कोई ज़िंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो आपके साथ में या आपके साथ लोग हैं, वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं, और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना ज़रूरी है, आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं उसमें हो गया, काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर
1: तभी
0: गेम में हैं
1: मौके
0: ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं।
1: आजकल बायोपिक का जमाना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू, कोई खास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
0: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन मेरा किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी, मतलब क्या कहते हैं उसको,
1: कमाल हो जाएगा।
0: बहुत हाँ, लेकिन वो खाली वो सपना है, वो तो मुझे पता है। लेकिन हाँ, अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें रहना
1: जुड़ना
0: चाहूँगा,
1: चाहेंगे।
0: जुड़ना चाहूँगा। जैसे अभी आर डी बर्मन जी की लाइफ पर फिल्म बन रही है, मैं ज़रूर, काश उसमें मुझे कुछ मिले, लेकिन
1: क्या बात है, हम चाहेंगे कि जरूर आपका ये सपना पूरा हो। और बाकी जब शारिब शूटिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं? आपका सुकून, जिसे बोलते हैं मन का सुकून।
0: मैं घर पर रहता हूँ, दोस्तों के साथ में वक्त गुजारता हूँ कि घर पे रहता हूँ, फैमिलीज जो हैं मतलब अपने दोस्त या तो घर पर बुलाता हूँ या दोस्तों के घर पर जाता हूँ, और फिल्में देखता हूँ, सीरीज़ देखता हूँ, गाने सुनता हूँ बहुत, और अगर ज़्यादा वक्त है तो फिर परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, म्यूज़िक बहुत पसंद है,
1: म्यूजिक तो हम जानते ही आपको।
0: फिल्में बहुत पसंद
1: जी
0: है, तो मतलब टाइम तो बहुत कम है एक्चुअली।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने फिल्मी सफर के साथ साथ जिंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ,
0: जी
1: और बहुत मजा आया बातचीत करके।
0: थैंक यू,
1: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी,
0: थैंक यू, थैंक
1: और आप
0: यू,
1: बार बार आए और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के जरिए।
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया, मेरे लिए मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर, और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में, जी मतलब आंख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज
1: जी
0: मैं वहां बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से
1: जी
0: आएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को है, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इसे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
4: भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की है। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से अलग सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में चल रही है। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी देंगे। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है, जबकि राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपने

0: तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। जिनेवा प्रेस क्लब में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कश्मीरी नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र के दौरान यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोकतांत्रिक स्वशासन, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय स्वामित्व, आवागमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के शासन को सुनिश्चित करने की मांग की गई। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया है। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक जीते। भारत 5 स्वर्ण, 21 रजत, 22 कांस्य सहित 48 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 243 अंक गिर कर 72,529 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब मिलकर आनंद लेते हैं कुछ फिल्मी गीतों का। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं कमाल खान की आवाज में प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना। संगीत है जतिन ललित का और बोल है समीर की।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं अगला गाना कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है मिस्टर आशिक। बोल हैं इंदिवर के और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

आइए एक बार फिर से सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में दीवाना फिल्म का गाना। बोल हैं समीर के और संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
1: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी ने लिखा है, अजीत जी विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहजपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
1: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे ये सब बात बताते, हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
2: जी।
1: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
2: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के 2 एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के 2 ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
1: तो आज सुनिए श्रोताओं, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
2: श्रोता, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
1: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
2: ओ, क्या हुआ था?
1: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था,

0: वो पानी में डूबने लगा।
1: श्रोताओं, मेघराज तैरना जानता था। उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
0: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
1: जी,
0: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
1: अजीत जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
0: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
1: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
0: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
1: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया।
0: ओह,
1: वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
0: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान दे दी।
1: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया।
1: जी,
0: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति K.R. नारायणन ने उनकी माता को यह पुरस्कार प्रदान किया।
1: जी,
0: आइए श्रोताओं, अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
1: जी, तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
0: श्रोताओं, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
1: बिल्कुल सही कहा अजीत जी, बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
0: जी, कुछ जीवन लंबे नहीं होते लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया, लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: जी,
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
2: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था,
3: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ।
2: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
3: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
2: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
3: है? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
2: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
4: महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
2: बादशाह ने कहा,
3: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
2: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति के

0: सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
1: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
0: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
1: बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
0: बीरबल ने उत्तर दिया,
2: हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
0: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
4: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साई साई करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह,
3: हाँ,
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
3: ये बात

0: तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा।
1: हाँ?
0: अरे अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
1: हाँ?
0: हमें हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: हाँ, चलो जल्दी चलो।
0: हाँ,
2: चलो बता देते हैं।
0: जय हिंद सर।
3: जय हिंद राम सिंह।
0: सर सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
3: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
0: जी सर।
3: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
2: जी सर।
3: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
0: जी सर।
3: जय हिंद।
0: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो। तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर!
3: माता की जय,
4: भारत माता की जय,
3: आगे बढ़ो।

0: साहब वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
1: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
0: जी साहब।
2: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
3: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
2: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
4: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा लाके देता हूं असले का। फायर! उत्तम सिंह
0: जी सर,
4: एलएमजी संभाल, छोड़, फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
3: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
2: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
5: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं, कितना खून बह रहा है, आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
1: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ, मशीन गन लाओ।
5: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
0: अच्छा,
1: सर यही मशीन गन। हुकुम सिंह, एक काम करो
0: जी,
1: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
0: जी साहब,
1: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को,
0: जल्दी करो।
1: जी साहब, बांध दिया साहब, ठीक से बन गई रस्सी ट्रिगर के साथ। इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ निकल, हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
0: जी सर,
1: ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
3: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
5: संभल कर, संभल कर।
1: सब यहां सर टिका लीजिए
5: सर। ऐसे
6: कालिका माता की जय।
2: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
6: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस, फायर, फायर।
2: सैनिक

0: बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया,
1: साथी हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
2: साहब,
1: तुम लोग आगे निकलो।
2: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
1: नहीं, नहीं, बात को समझो, अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
2: नहीं साहब।
1: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
2: नहीं साहब, नहीं,
1: नहीं आदेश, इट्स एन ऑर्डर
2: सर।
1: जाओ, अलविदा, अलविदा दोस्तों, अलविदा भारत।
3: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
0: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
4: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
0: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
3: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांगला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साएं साएं चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।

0: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
1: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉ. जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इसे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में आज हुई। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी दी। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की बात कही। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से शिष्टाचार भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच

0: बेहतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष बल दिया गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की ये यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। जापान एशियाई खेलों में महिला 4x400 रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 4x400 पुरुष रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FMX 7.2 MHz ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: आउन सुन लिया लता मंगेशकर की आवाज़ च मासूम फिल्म का एक गाना।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, मीडिया और पत्रकारिता की लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका। हरियाणा की सभी अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 30 दिन की वैधता वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान को अनिवार्य रूप से लागू किया। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विश्व हृदय दिवस पर राज्य के नागरिकों को दिल की सेहत के प्रति सतर्क और जागरूक रहने का आह्वान किया। और हरियाणा की निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे असीम गर्व का क्षण बताया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: हरियाणा की सभी अनाज मंडियों में आज धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने हिसार की अनाज मंडी का दौरा किया और धान व बाजरा की फसल की खरीद, उठान और किसानों के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों को कोई भी परेशानी ना आए, इसलिए मंडियों का दौरा किया जा रहा है।
2: जो जीरी है उसका हमने आज विद्युत रूप से शुरुआत कर दी है खरीद की पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, और किसानों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए इसलिए मंडी हम जा रहे हैं। सीएम साहब ने सभी विधायकों की, सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई हुई है कि इस बात के लिए हमारी कमिटमेंट है किसान को कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की ना आए।
0: कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। बाजरा या अन्य फसल यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बिकती है तो भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों की भरपाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र में धान की सरकारी खरीद का जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने थानेसर अनाज मंडी का दौरा किया और खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
3: एक एक दाना पैडी कहाँ से देगी? साथ में मैंने कहा 17 मोर्चर की जीरी लेके आएंगे। किसान भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर रक्षा है, एक भी अगर 17 मोर्चर की जीरी ले लेता राइस मिलर उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, हम फर्स्ट कह रहे हैं। मैं डीएफएससी साहब को कहा है, यहाँ पे पूरा सिस्टम रहेगा।
0: उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वे मंडी में 17 नमी की धान ही लेकर आए ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आज वल्लभगढ़

0: अनाज मंडी में धान की आवक, खरीद, उठान, रखरखाव तथा किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री ने मंडी में किसानों और आढ़तियों से बातचीत कर खरीद व्यवस्था पर प्रतिक्रिया ली। किसानों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल उनके समाधान के निर्देश भी दिए। श्री नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 30 दिन की वैधता वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस और SMS वाले प्लान भी लाने होंगे। राज्यसभा में BJP सांसद राघव चड्ढा ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमन का स्वागत किया। उन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया था। श्री चड्ढा ने कहा कि अब ग्राहक को साल में 13 बार की बजाय 12 बार ही अपना मासिक रिचार्ज करवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वॉइस और SMS वाले प्लान से उन ग्राहकों को फायदा होगा जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज विश्व हृदय दिवस पर राज्य के नागरिकों को दिल की सेहत के प्रति सतर्क और जागरूक रहने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जारी एक विशेष जन जागरूकता संदेश में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उच्च रक्तचाप हृदय रोगों का सबसे बड़ा और रोके जाने योग्य जोखिम कारक है। स्वास्थ्य मंत्री ने उच्च रक्तचाप से पीड़ित मरीजों को डॉक्टर की नियमित सलाह लेने, जटिलताओं से बचने के लिए बताई गई दवाइयों का नियमित सेवन करने, खुद से दवा ना बदलने और अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या NCD क्लिनिक में नियमित जांच कराने की सलाह दी है। हरियाणा की 26 साल की निशानेबाज नीरू ढांडा ने आज महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। उधर मुक्केबाजी में हरियाणा के नरेंद्र बेरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलो और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलो भार वर्ग में फाइनल में प्रवेश कर लिया। सेमीफाइनल में परवीन ने चीन की ली शू को 5-0 से और अंकुश ने उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरिक ने बोवा को 4-1 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेल 2026 में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ये असीम गर्व का क्षण है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी ये जीत भारतीय युवाओं को निशानेबाजी में जाने के लिए प्रेरित करेगी। एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर आज अपने गांव भिवानी रोहिल्ला पहुंची भारतीय कबड्डी खिलाड़ी मनीषा का जोरदार स्वागत किया गया। गांव के राजकीय स्कूल में हुए सम्मान समारोह में मनीषा को सम्मानित किया गया। इसी दौरान मनीषा ने मीडिया से बातचीत में कहा,
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए और देश का प्रदेश का नाम रोशन किया। वो गांव ने इतना मान सम्मान दिया, हमारे AKFI फेडरेशन, हमारे कोचेस, मतलब पहले से ही उम्मीद थी हम गोल्ड लेके आएंगे। ईरान की टीम काफी अच्छी थी, उनका मैच भी हमारा उनके साथ आया था, फाइनल मैच बहुत ही टक्कर का मैच लगे था और पूरी टीम ने बहुत अच्छा खेला और हमने गोल्ड जीता।
0: भिवानी जिले के गाँव धनाना की बहु अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज दर्शना घनघस ने 75वीं ऑल इंडिया पुलिस प्रतियोगिता मुक्केबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने के बाद घर लौटने पर दर्शना का जोरदार स्वागत किया गया और वरिष्ठ खेल हस्तियों व परिजनों ने उन्हें आशीर्वाद देकर भविष्य की बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कक्षा 6 के इस वर्ष के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह 3 भाषा नीति से छूट देने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। CBSE

के बयान के अनुसार कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे वर्तमान विद्यार्थियों को कक्षा 10 में प्रवेश करने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि छठी के विद्यार्थियों को यह छूट नहीं दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, मीडिया और पत्रकारिता की लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका। हरियाणा की सभी अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 30 दिन की वैधता वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान को अनिवार्य रूप से लागू किया। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विश्व हृदय दिवस पर राज्य के नागरिकों को दिल की सेहत के प्रति सतर्क और जागरूक रहने का आह्वान किया। और हरियाणा की निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे असीम गर्व का क्षण बताया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: तमगा जितने की वधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश लिए बहुत माण वाली गल है। आखिर खास खबर एक बार फिर तो बीजेपी वालों शुरू की गई नशा मुक्त पंजाब यात्रा कल जलंधर विखे होगी समाप्त। गृहमंत्री अमित शाह इस यात्रा में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री डॉ बलजीत कौर ने नशा मुक्ति मित्र वजो सेवावां निभा रही भी आंगनवाड़ी वर्करा उन्होंने योगदान लिए सम्मानित किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों मोहाली स्थित टीडीआई इंफ्राटेक के दफ्तर छापेमारी जारी। एशियाई खेडों में निशानेबाज नीरू टांडा ने औरतों के ट्रैप मुकाबले भारत लिए पहला व्यक्तिगत सोने का तमगा जीत के इतिहास रचा। इस प्रदेशक खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंगे। राष्ट्रीय खबरों का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे रात 8:30। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। आओ हुण सर्वन करते हैं शब्द अमृत बाणी ते तहत। सब तो पहला सर्वन करते हैं संत अनूप सिंह दी आवाज विच ए शब्द।

0: है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
5: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
6: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
5: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
6: HIV
5: नहीं पता ना, समझदार वीरे ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल, संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल, संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
7: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

0: अभी आपने नया दौर फिल्म में मोहम्मद रफी और आशा भोसले को सुना। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी ओपी नैयर ने। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।
1: क्या कहा?

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में जुएल थी फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है SD बर्मन ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म है हीरा पन्ना। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: अब सुनिए हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में उन्हीं का गाया गीत, बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने, फिल्म का नाम 20 साल बाद।
4: करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लो

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म आंसू बन गए फूल। गोविंद मुनीस के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर और मनहर उदास को। फिल्म है अभिमान। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।

अभी आपने तलाश फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी एस डी बर्मन ने। तलाश फिल्म के इस गीत के साथ ही जयमाला कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी है ते तुसे सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। केंद्रीय सभ्याचारक अते सैर सपाटा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मीडिया अते पत्रकारी लोकां ने दृष्टिकोण नूं आकार देण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभांदे ने। हरियाणा दीआं सारीआं अनाज मंडियां विच झोने दी सरकारी खरीद शुरू हो गई है। भारतीय दूर संचार रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 30 दिनां दी वैधता वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान नूं लाजमी रूप नाल लागू कर दिता है। हरियाणा दे सेहत मंत्री आरती सिंह राव ने विश्व दिल दिवस ते राज दे नागरिकां नूं दिल दी सेहत प्रति सुचेत अते जागरूक रहण दा सद्दा दिता। हरियाणा दे निशानेबाज नीरू टांडा ने महिला ट्रैप मुकाबले विच सोन तमगा जित के इतिहास रचिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस नूं बहुत मान वाला पल दस्या। ए सन मुख प्रादेशिक खबरां। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ से ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर चे तुसी सुनोगे कुछ पंजाबी गीत।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: आहून सुन दिया कुछ चोर में पंजाबी गीत। प्रोग्राम का पहला गीत पेश कर रहे हैं हरभजन मान ते रानी रणदीप दिया आवाज़ों में।

0: आज के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं वृंदा मंजीत की लिखी झलकी। प्रश्न तो यही है, निर्देशक हैं अजीमुद्दीन।
1: अरे देखो भाई, कोई दरवाजे पर है। अरे कोई है यहां पर कि नहीं? अरे ठहरो भाई, आ रहा हूं। हाँ,
2: इस घर में तो ऐसा लगता है कि सब सुनकर भी बहरे बने रहते हैं।
3: नमस्ते दादाजी।
2: अच्छा
3: जी,
2: तो तुम हो
3: जी?
2: देखो तो क्या बजा है घड़ी में, ये भी कोई अन्य कटाई में नौकरी करते हो या मजाक?
3: नौकरी ही करते हैं दादाजी, वो भी रोज। मजाल है कभी एक दिन एक घड़ी की छुट्टी मिली हो। अभी 9:30 बजा है, सिर्फ आधे घंटे की देर हुई है। और आप इतने नाराज हो गए, अभी तो बीबी जी की बारी है।
2: अरे क्या करें भाई, सबको दफ्तर भी तो जाना है समय पर।
3: पर रात में 10 बजे जाने वाला मैं दरबारी, सुबह 8 बजे तो आने से रहा ना।
2: अच्छा अच्छा, अब बंद कर अपनी बक बक और शुरू हो जा
3: जी।
2: नहीं तो बहू अभी दोनों पर बरस पड़ेगी। हाँ
3: हाँ,
2: और सुन
3: जी,
2: मेरे लिए चुपके से एक प्याली चाय ले आ।
3: अच्छा,
2: अशोक से भी पूछ लेना, शायद वो भी पिए।
3: जी अभी लाया दादाजी।
4: अरे सुनते हो, 10 बज गए, अभी तक आप तैयार हुए कि नहीं? देर हो रही है ऑफिस के लिए।
5: अरे दूसरे जूते की लेस बांध रहा हूँ। वीरा सुनो, तुम दरवाजे तक पहुँचो, मैं भी आ ही रहा हूँ। और वो दरबारी आ गया है, वो बाकी देख लेगा।
4: देख क्या लेगा खाक, आते ही उनकी सेवा में लग गया होगा। थोड़ी चाय बना देना, जरा पैर दबा देना। दोनों पता नहीं कब तक यहाँ पड़े, हमारे लिए फांसी बने रहेंगे। जी माँ जी।
6: बेटा देर हो रही है तुमको, अशोक दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा होगा। बेटा
4: जा रही हूँ बाबा, घड़ी देखते रहते हैं, मैं कैसे निकलूं यहाँ से। और फिर दोनों जी भर कर मुझे कोसे। चलू निकलूं यहाँ से, नहीं तो सच में देर हो जाएगी।
6: अरे सुनो।
2: हाँ,
6: मैं कह रही थी आज स्टोर में ताला लगाकर बहू चाबी शायद साथ ले गई है।
2: हाँ, हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि जानबूझ कर ले गई हो।
6: नहीं,
2: कल देखा था ना तुमने, मेरे मिलने वालों में चाय जरा थोड़ी ज्यादा ही चल गई थी।
6: नहीं, अरे ऐसा नहीं कर।
2: अरे क्या नहीं है, देखा नहीं था ऑफिस से आते ही कैसे शक्कर का डिब्बा जमीन पर फेंका था उसने? है? अरे अहिल्या, कभी हमने भी ऐसा सोचा था क्या कि कौन क्या खा गया, कौन क्या पी गया? है?
6: भाई वो जमाना और था और ये जमाना और है। अरे आजकल इतने हिसाब से ना चले तो भला कैसे चलेगा? बाजार देखो तो आसमान पर जा रहा है।
2: सो तो है।
6: फिर हमारे बेटा बहू तो दिन भर मेहनत करते हैं, करते हैं ना? हाँ सुनो।
2: हाँ।
6: पेंशन मिले तो चंचल के लिए नए कपड़े लाना है। और सुनो, बहू के लिए चांदी की बिछिया ही ले लेना, कुछ तो देना ही चाहिए ना।
2: ठीक है।
6: हाँ।
2: देखेंगे।
5: अरे वीणा सुनती हो? अरे भैया आज इतवार का दिन भी कैसा गुजर रहा है, दूसरी प्याली चाय को तरस गया भाई।
4: अरे जी
5: क्या बात है, आज सुबह से ही मूड कुछ खराब सा लग रहा। रात को कोई बुरा सपना देखा है क्या?
4: बुरा सपना देखने की जरूरत ही नहीं है,

0: शादी के 13 साल हो गए, लगातार साथ में जो चल रहा है वो सपने से कहीं कम है क्या?
1: क्या मतलब?
0: देखो मैं एक बात बोल रही हूँ, तुम कहो तो मैं बताऊं।
1: अब बताओ ना, भूमिका की जरूरत क्या है?
0: मम्मी पापा यहाँ रोज घर में बोर होते हैं, उन्हें ना उनकी कंपनी मिलती है और ना ही उनके मन का माहौल। तो क्या, मैंने पता लगवाया है शहर में ऐसे कम से कम 10 केंद्र तो होंगे जहाँ इस उम्र के लोग अच्छी तरह मिल बैठते ही नहीं साथ में रहते भी हैं। उन्हें आपस में चर्चा करने का, हंसने का, बोलने का पूरा समय मिलता है।
1: तो क्या तुम इन्हें भी दिन भर के लिए वहां भेजना चाहती हो?
0: दिन भर के लिए क्यों, वहां रह क्यों नहीं सकते? हम भी हफ्ते में एक दिन उनको देख आएंगे, मिल आएंगे, अच्छा लगेगा।
1: तुम्हारा मतलब वृद्धाश्रम से है ना, जहां परिवार पर भारी लगने वाले इन बुजुर्गों को छोड़कर परिवार वाले आराम से जीवन बसर करते हैं।
0: उसके बाद भी आराम कहाँ मिलता है, हर हफ्ते तो जाना ही पड़ता है परिवार वालों को।
1: जरूरी नहीं है, कुछ तो एक बार छोड़ने के बाद सिर्फ शव यात्रा के समय ही सीधे शमशान घाट जाते हैं। नहीं वीना, नहीं, मैं अपने माँ बाप को वहां छोड़ नहीं सकता।
0: क्यों, आज 13 साल हमारी शादी के हो गए, एक दिन भी कभी स्वतंत्रता देखी हो तो कहो, अब बेटा भी बड़ा हो रहा है।
1: देखो वीना, हमारी जिंदगी की शुरुआत बहुत गरीबी से हुई है। मेरे माँ बाप ने कभी हमें किसी भी चीज से मोहताज नहीं रखा, और आज उनकी इस उम्र में उन्हें अपने से अलग करना, छी, मैं सोच भी नहीं सकता। फिर उन्हें लगातार दवाइयां चाहिए, दूध चाहिए।
0: दूध हम दरबारी से सीधे आश्रम भिजवा देंगे, रोज 1 किलो दोनों के लिए। रही दवाओं की बात, तो कोई कह रहा था कि दवाएं तो वहां मुफ्त में मिल जाती हैं।
1: मिल जाती होंगी, मैं तो इस बात के पक्ष में नहीं हूं। फिर उनके यहां रहने से हमें कोई तकलीफ भी तो नहीं है।
0: कैसे नहीं है, आज छुट्टी है, अकेले होते तो आराम से कहीं बाहर जा सकते थे, कहीं रिश्तेदारी में जा सकते थे, बस बैठे रहो दिन भर कि पता नहीं कब हमें आवाज दे लें, सारे संबंध टूट गए।
1: देखो वीना, मेरे लिए कहीं ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने माँ बाप की जितनी बन सके सेवा करूं।
0: करो ना, किसने मना किया है, सेवा तो तुम वहां जाकर भी कर सकते हो।
1: नहीं मीणा, नहीं, मन नहीं मानता। फिर बाबूजी से कैसे कहूंगा कि आप वृद्धाश्रम चले जाइए, यहां हम बंधन महसूस कर रहे हैं।
0: वो मुझ पर छोड़ दो, मैं धीरे धीरे अम्मा बाबूजी को समझा दूंगी, तुमसे अनुमति चाहिए थी सो मिल गई।
1: देख लो वीरा, मेरा सेवा का संकल्प है।
0: वो नहीं टूटेगा, सब ठीक हो जाएगा।
2: माँ, प्रतिभा आंटी आई हैं।
0: आओ आओ प्रतिभा, कैसी हो, बड़ी देर कर दी आने में।
3: हाय हेलो यार, सुबह मैसेज मिला था तुम्हारा, काम निपटाते निपटाते दोपहर हो गई, थोड़ी फुर्सत मिली तो निकल आई, बता कैसे याद किया आज।
0: यार तुमसे एक राय लेनी है। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है।
3: किस बात पर?
0: ये चाहते हैं कि इनके मम्मी पापा को एक स्थायी कंपनी मिले जहाँ वे अपने अकेलेपन को भूल कर हंसी खुशी दिन काट सकें। अब बता, यहाँ हम दोनों नौकरी वाले भला कब तक इन लोगों के साथ बैठ सकते हैं। अब रहा ये हमारा बेटा चंचल, तो बेचारा दिन भर उनके साथ लगा रहता है।
3: तो चाहती क्या है, साफ साफ बोलना।
0: यदि कोई वृद्धाश्रम तेरी निगाह में हो तो बताना।
3: अच्छा, तो ये स्कीम है, ठीक भी है भाई, इन बुजुर्गों को तो अपने लिए आसरा जवानी में ही बना लेना चाहिए, अब नाती पोतों के घर में अतिरिक्त जिम्मेवारी कौन उठा सकता है।
0: तो तू समझ गई ना, तो अब बता।
3: अरे यही 10 किलोमीटर दूर है एक आश्रम, अस्पताल भी पास में है, बहुत ही सेवाभावी लोग हैं, बेचारे पूरा ध्यान रखते हैं।
0: तू जानती है उनको? जगह मिल जाएगी ना?
3: अरे बिल्कुल मिल जाएगी, अरे दो ही तो लोग हैं, 2 गद्दे, 4 चादर, 2 कंबल, 2 तकिए, लोहे की पेटी में कपड़े और खाने के लिए 1 प्लेट, साथ में 1 गिलास, बस इतना सही तो सामान देना है।
0: पलंग वगैरह?
3: अरे इतनी भी जगह नहीं है, सभी लोग तो जमीन पर सोते हैं, वहां तो कई ऐसे भी हैं जिनके पास गद्दे भी नहीं है, बेचारे वैसे ही जमीन पर पड़े रहते हैं। हमारे घरों में शादी पार्टियों के बाद बचा हुआ खाना वहीं तो बांटा जाता है। अब भाई इतनी जल्दी केवल सिर्फ वही तो जगह मिल सकती है, और कोई तो जगह मिलने से रही।
4: क्यों माँ, कौन रहेगा उस नए आश्रम में?
0: चुप रहे, बीच में नहीं बोलते।
4: दादा दादी वहीं रहेंगे क्या?

0: चलो जाओ बाहर खेलो, देखो तुम्हें दीपू बुला रहा है।
1: पहले मुझे बताओ कब जाएंगे दादाजी?
0: कल जाएंगे।
1: आंटी वहाँ आश्रम में बच्चे भी रहते हैं क्या?
2: अरे नहीं बेटा, वहाँ केवल दादा दादी ही रहते हैं।
1: वे लोग अपने घर में क्यों नहीं रहते, वहाँ क्यों रहते हैं?
2: वहाँ उनके दोस्त रहते हैं, सब लोग साथ में बैठते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सिनेमा देखते हैं और खाना खाते हैं।
1: और
2: खूब मजे भी करते हैं।
1: उनके पैर कौन दबाता है?
2: कोई भी नहीं।
1: फिर तो उनके पैर दुखते होंगे, मैं तो रोज अपनी दादी के पैर दबाता हूँ।
2: अच्छा
1: आंटी, दादाजी पापा के पापा है ना?
2: हाँ बेटे।
1: फिर दादाजी पापा को ऐसे ही प्यार करते होंगे जैसे पापा मुझे, है ना?
2: हाँ बेटा, इसमें तो कोई शक नहीं है।
1: फिर पापा अपने पापा को उस नए आश्रम में इसलिए छोड़ रहे हैं ना क्योंकि दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं। तो आंटी मैं भी बड़ा होकर पापा मम्मी को उस आश्रम भेजूंगा ना, बोलो ना आंटी, है ना?
2: मालूम नहीं बेटा
0: क्या हो रहा है यहाँ, क्या बकबक कर रहा है प्रतिभा, तुम्हें बोर कर दिया होगा इसने।
2: अरे नहीं ऐसा तो नहीं है, पर वीणा कोई भी निर्णय लेने के पहले चंचल के प्रश्न जरूर सुन लेना।
0: प्रश्न? कैसे प्रश्न?
2: उनके जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, यदि तेरे पास हो तो मुझे बताना जरूर।
0: मैं कुछ समझी नहीं, ये चंचल भी ना कभी कभी अजीब उलझन पैदा करता है।
2: वीणा हम अपने स्वार्थ में अंधे होकर सोच विचार में मगन थे, चंचल ने सच में हमारी आंखें खोल दी। वीणा हमारे सास ससुर अपने पूरे जीवन में सर पर छाया बनकर रह सकें, इसी में हमारा कल भी सुरक्षित है, इस बात का ध्यान रखना।
1: माँ माँ देखो दादाजी मेरे लिए क्या लाए हैं, ये कपड़े और ये चॉकलेट।
3: बहू बहू वो क्या है कि पेंशन के थोड़े से पैसे थे इसलिए चंचल के लिए कॉटन का ही सूट ला पाया। तुम्हारे लिए भी बेटा कुछ खास तो नहीं, पर मैं चांदी की बिछिया लाया हूँ, देखो शायद तुम्हें पसंद आ जाए।
4: हाँ बहू, पहली बार बेटा हमने हिम्मत की है, पसंद ना आए तो वापस कर देना, दूसरा बदला देंगे। हैं
0: क्या बाबूजी, मेरे लिए ये उपहार तो मेरी सुहाग के लिए वरदान है, मैं ही इतना गिर गई थी बाबूजी कि
5: बाबूजी इसने आपके इस उम्र में बोरिया बिस्तर बदलवाने की तैयारी करवा दी थी।
1: नहीं पापा, मम्मी तो सिर्फ जानकारी ले रही थी, क्यों है ना मम्मी?
0: चुप शैतान।
5: चुप क्यों भाई, वास्तव में प्रश्न तो यही है ना।
6: क्यों बीबी जी, तो कल से आश्रम में 1 लीटर दूध अलग से देना शुरू कर दूं? तैयारियां हो गई होगी।

प्रश्न तो यही है। हवा महल में अभी आप वृंदा मंजीत की लिखी यह झलकी सुन रहे थे। इसके निर्देशक थे अजीमुद्दीन। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के भोपाल केंद्र के सौजन्य से।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत, चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

अभी आपने श्रेया घोषाल और फरहान सईद को हाफ गर्लफ्रेंड में सुना। बोल लिखे थे कुमार ने, संगीत फरहान सईद का था।

अगला गीत टू स्टेट्स फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा ने। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए सनम तेरी कसम। इस फिल्म में नीति मोहन, आकाशा सिंह और दर्शन रावल को समीर अंजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए रेखा भारद्वाज और अरिजीत सिंह को। फिल्म है बदलापुर, बोल लिखे हैं दिनेश विजान और प्रिया सरैया ने, संगीत सचिन जिगर का है।

एजेंट विनोद। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश इस फिल्म से। हम सीका और अरिजीत सिंह के गाए। इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने, बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं। हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज, अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र

0: में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
4: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
1: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
5: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते

0: में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
1: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
2: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपए मिलता है।
0: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews.hindi को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान खतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान खतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
5: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
3: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं माया फिल्म के गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है सलील चौधरी ने। दिल वाला।

अभी जब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की फिल्म का नाम दाग।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
4: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
3: दिन में 12 से 2 के बीच
5: अगर तुम मिल जाओ।
3: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
6: अब सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म है मेरे सनम। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका

0: पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया, उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म है लीडर, शकील बदायूनी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है नौशाद ने।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: नाची गाई सबके मन बहलावर भैया।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।

साला चंदाना, ये सोला साला चंदाना है तेरे ख्याला चंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ।

0: आतई दंडाना क्यों पास ना आतई दंडाना जा मारिए बाता दंडाना दिल तोड़िए घाता दंडाना तुम्हें किधर को जाता ही दंडाना क्यों पास ना आता ही दंडाना जा मारिए बाता दंडाना दिल तोड़िए घाता दंडाना हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं।
1: अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और महमूद को गुमनाम फिल्म में सुना। शैलेंद्र के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफ़र आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ख्यालों में
1: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
2: आए सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
3: मां भाग रही थू मैं, काले से डर गए क्या?
4: हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ?

0: आए तेरे ख्याला चंदाना, ये गोरे गाला चंदाना, ये रेशमी बाला चंदाना, ये सोला साला चंदाना, आए तेरे ख्याला चंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्ज़ाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। यह फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम,
4: बोल दो बापू।
3: बोल दे बेटा।
4: बाप

0: भैया
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है, रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है ना।

ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

0: महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी और जिसके नायक होते थे महमूद।
1: What's going on?

0: ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बा कमाल हैं।
1: वनकम जी,
2: ओ पहुंचिए ना।
1: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद कर।
2: क्या है?
1: खिड़की बंद करना जी।
2: क्यों?
1: ये वो बड़ा बड़ा आंख खोल के देखता ना।
2: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
1: आइयो यो पहला बोलना ना ऐसा बात। बाय बोला तुम आना गाना गाना आना।
3: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
1: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, या हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहे हैं गाना गाना।
4: चल
1: चल तुम बदाना।
0: दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
5: यक चतुरन

0: बदकम्मा बदकम्मा
1: बदकम्मा ओ बदकम्मा।
2: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि

ಇನ್ನಾಯ ಅದು ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಚೋಳೆಗಳೇ.

0: चतुरा गोला, ये क्या रहा गोला चतुरा, गोला चतुरा एक पे रहना, या गोला बोला या चतुर बोला गा।
1: एक पे कैसे रहते जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हूँ मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल दी गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देवबर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आर डी बर्मन को पूरी आज़ादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना, संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
2: गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम,

0: जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे कपटा मौसम, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
1: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया, हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
1: नहीं साहब, ने बड़े से बड़ी गाली दे ले, पर हमको चोर मत कहो।
3: ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं,
1: गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मतलब मेरा बेटा नहीं।
2: दोस्तों हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम, महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया, देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?

इंटरनेशनल फकीर आए हैं, दिनार नहीं तो डॉलर चले

0: हर्रा सुहाना होगा।
1: अच्छा
0: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।

0: तो ये था आज का, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मा

0: जाने की था।
1: अच्छा, फिर एक गल का जवाब दे, HIV किमें फैलदा है?
0: HIV
1: नहीं पता ना, समझदार वीरे, ता सुन, HIV किमें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
3: रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दुनिया की भीड़ में कभी कभी सारे चेहरे अजनबी हो जाते हैं, ऐसे में सीधी सादी सड़क टेढ़ी हो जाती है, रास्ते नजर नहीं आते, चेहरे पर घिराई उदासी परेशान करती है, जिंदगी को मुट्ठी में बंद कर उससे बतियाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी रेत की मानिंद फिसलती जाती है, ऐसे में हम जिंदगी को बुलाते हैं, मनहार करते हैं।

रूठी हुई जिंदगी जब मान जाती है तो लम्हे मोती से चमक उठते हैं, दिल खिल जाता है, आंखों में प्यार बेशुमार होता है, खुशियों का खजाना बन जाती है जिंदगी जब खुश होती है जिंदगी।

0: कुछ लम्हे कभी बूढ़े नहीं होते, उन लम्हों पर अतीत की गर्द नहीं छाती, न ही वो धूमिल होते हैं। वो लम्हे ताजी धुली आंखों की तरह चमकते रहते हैं। वो लम्हे बारिश में धुली पत्तियों की तरह हमेशा हरे रहते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की इनायत सबको नहीं मिलती, जिन्हें मिलती है मोहब्बत उनकी जिंदगी फूलों की झालर सी सजी होती है। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब मिल जाता है किसी का भला सा साथ। नदी में तैरती कश्ती पर दो चाहने वाले एक साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। वो कांटों की परवाह नहीं करते। खुशनसीब होते हैं जिनकी जिंदगी मोहब्बत से भरी होती है।

प्यार की खुशबू से जिंदगी लबरेज हो गई एक रोज। हर मुलाकात में फूलों का खिलना था, हर बात में मुस्कान। माँ ने सिखाई थी एक बात, एक गठान दी थी। लगता था अब कभी कुछ टूट नहीं सकता, लेकिन हर वक्त ठहरा नहीं। धीरे धीरे रिश्ते बदलते गए, शब्दों की जगह खामोशी ने ले ली और समझ की जगह ना समझे ने। माँ ने जो गठान लगाई थी वो जुड़ने के लिए थी, लेकिन अब टूटने की जिद करने लगी। सिक्के अब भी जेब में थे, पर हाथ कांपने लगे थे उन्हें खर्च करने से पहले।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है। कुछ दर्द भरी स्मृतियां होती हैं, कुछ खुशगवार। कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान हो जाता है। कुछ दर्दीली स्मृतियां हमें सहलाती भी हैं। कुछ प्यारी स्मृतियां हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं प्यार भरे गीत।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: विकोटर्म

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: सारे सुनने वाले का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मनमोहन बारिश के इस गीत तो।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
2: अच्छा फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
6: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र ते इस वेले तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम सुरसांड। सुनवा रहे हैं एक बार फिर JCB दी आवाज विच एक गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
3: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन।

0: इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहाँ भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों, ये तय किया। तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि ये खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।